मन के विकार मिटे प्रसिमरत जन्म जन्म की मैल हरी रखाओ जाके गृह में सगल निधान जाकी सेवा पाएगे मान सगल मनोरथ पूर्ण हार जी प्राण भगतन आधार काट काट अंतर सगल प्रगास जप जप जीवे भगत गुण तास जाकी सेवना बिरती जाए मन तन अंतर एक त्याय गुर उपदेश दया संतोख नाम निधान निर्मल इव थोक तार कृपा लीजे लड़ लाए चरण कमल नानक नित त्याय भैरो महला पनवा सतगुर अपने सुनी अरदास कार्ज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु त्याया गुर पूरे डर सगल चुकाया सब ते वड समर्थ गुरदेव सब सुख पाई तिस की सेव रहाओ जाका किया सब किश होए तिसका अमर ना मिटे कोए पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप।

सार ब्रह्म का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

अंधारा जिस नाम हृदय तो पुरख परवान ना बिना फिर आमन जान। तिन नाम पाया जिस पयो किरपाल साध संगत मैं लखे गोपाल आमन जान रह गई सुख पाया।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाव विर माया नाव मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाव मेरे बंत पनाव मेरे पाई, नाव मेरे संग अंत होए सगाई।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना। अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब की स्यार से

जन कबीर को जोर ना पहुंचे, कहां करो रग राया, काम किवारी दो सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा।

विद्या कोट सबे गुण कहे तऊ पार ब्रह्म का अंत न लह बावन कोट जाके रुमावली रामन सयना जयते शली सहस कोट भोकर्त पुराण दुर्योधन का मथिया मान कंदर्व कोट जाके लवे न तरह अंतर अंतर मनसा हर कहे कबीर सुन सार्ग पान दे अपय पद मांग उदान भैरो बाणी नाम दियो जियो की कार पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

असंख कोट अन पूजा करी। एक न पूस नामे हरि, परमे नाम दियो इहो करणा। अंत रूप तेरे नारायण, पर थान पर दारा पर हरि। ताके निट बसे नर हरि, जो

तैसे ओए नरा परमत नाम दियो नाके बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाए नामे दुहे आनी दूध पियो गोबिंद राए दूध पियो मेरो मन पति आए नहीं ता कर को बापर साए अरहाओ सोयन कटोरी अमृत परी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हृदय बसे नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का दर्शन पया।

भगत जना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखाबंद जल सेती काज, जैसी

तंदा जैसी संबल देख सुआ बिगसाना आंद की बार मुआ लपटाना पापी का घर अग्ने माहे जलत रहे मिटवे कब नाहे हरहाओ हर की भगत न देखे जाए मार्ग छोड़ अमार।

अगन बनस्पत मौली सागर पंडय पाया, चंद सूरज दुह करही पीतर ऐसा ज्ञान न पाया। आराम रवंता जानिए एक माई भोग करे, ताके लखन जानिए खिमा तन संग्रेह, कया सुने ना खाया मन है,

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेवरांगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ भागे,

गुर शब्दी हर चेत सुपाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया।

अरहाओ गुर प्रसाद लागे नाम स्वाद, काहे जन्म गवाब हो वैरवाद, पुर कृपा कीनी चूका अवमान। सहज पाए पाया हर नाम, उत्तम ऊंचा शब्द काम, नानक वखाणे साच नाम, बसंत महला तीजा। बनसत मौली चढ़िया बसंत, यो मन मोल्या सतगुरु संग, तुम साज त्यावो मुद मना, ता सुख पावो मेरे मना। अरहाओ एत मन मौल्य पया आनंद, अमृत फल पाया नाम गोविंद, एक को एक तब आख बखाणे, हुक्मे बूझे ता एक।

आमना व्रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी सब गुरु मेरे ता खोजिए मेरे ज्योति ज्योत सुबानी माधो साधु जन देव मिलाए देखत दर्श पाप सब नस पवित्र परम पद पाए रघाओ पंच चोर मिल लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया गुरमत खोज परे तप करे तन साबत रास उबरिया पाखंड परम उपाप कर थाके अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पद पाया अज्ञान अंधेर गवाया जगन्नाथ जगदीश गुसाई कर कृपा साध मिलावे नानक सांत होवे मन अंतर नित हिरदे हर गुण गावे बसंत महला चौथा हिंडोल तुम वड़ पुरख वड़ अगम गुसाई हम कीरे किरम तुमन से हर दीन दयाल करो प्रभु कृपा गुर सदगुर चरण हम बनछे गोविंद जियो सद संगत मेल कर कृपशे जन्म जन्म के किल बिकमल भरिया मिल संगत कर प्रभ हंसे।

तेरा दिया सब जंत खागे अंतरजामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझे देहो दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत मगल्ला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद खड़ खड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग मन पाप करत तू सदा संग।

हर हरे बसंत महला पंजवां कार दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हुए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो लिवलाए हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाए इन विद पासा ढलो वीर गुरमुख नाम जपो दिन राती अंतकाल नै लागे पीर रगाओ कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो सत करो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोह जीतो ऐसी खेल घर प्यारी उठ इसनान करो प्रभाते सोए घर आराधे बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर सुख सहज से ती कर जाते हर आपे खेले आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नान गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर आया बसंत महला पंजवां हिंडोल तेरी कुदरत तू है जान है और ना दूजा जान है जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुदे पछाण तेरिया भगता कौ बलिहारा थान सो आवसदा प्रो तेरा रंग तेरे आपारा रहाओ तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग तरता तू वड़दाता तू वड़दाना और नहीं को दूजा तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना बसंत हिंडोल महला पंजवां मूल ना बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहंग मनी पिता पार ब्रह्म प्राप्त हनी मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ ओपत परलो प्रवते होवे ए बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते काल में सुहिए से गनी आवर उपाओ न को सूझे नानक तरिगे गुर बचनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हिंडोल महला नावा साधु इव तन मिथिया जानो या पीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो रघाओ इव जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो संग

मन पूलो समझस साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ। मन पूलो परमस पावरतार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैगल ज्यों फास।

मन मुख परमे मज गुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करणी बिन परम न भागे रघाओ, मन मुख अंधले गुरमत न पाई, पशु पय अपमान न जाई, लग चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर पाणे सिरज समाए, सगली फूले नहीं शब्द अचार, सो समझे से गुर करता।

तै लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचारे कोए। एबद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद पजो।

दू सुग बांधो संसार मन उदरण का साज नाहे पाबंदन नित पौत जागे ईठ मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खावे जाके तीने होत बेकार से छोड़ चलिया खिण मैं गवार माया मुए मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने।

देव जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, ते देही के अधिक काम। कह कबीर पज राम नाम, जो ए खसम है जाया, पूत बाब खेलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया। देखो लोगा कल को पाओ, सुत मुकलाई अपनी माओ, रहाओ पगा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नरपय सोवे, बिन बासन खीर बिलोवे, बिन अस्थन गऊ लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट न पाई। कहो कबीर समझाई, प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बोलिए बाल, मोको कां पढ़ावस आल जाल। मेरी पटिया लिख दियो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे जहां जाएगे तै जल पखान तू पूर रहे हो।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरे न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तार।

मन राम नाम मन मानी, मेरे हीरे सदगुरु प्रीत लगाई, मन हर हर कथा सुखानी रघाओ, दीन दयाल हो भोजन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी, संत से नाम मिल सारस पाया, हर मन तन मीठ लगानी, हर के रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरखे पुरख मिलया सुख पाया, सौ चूकी आमन जानी, नैनी बिरो देखा प्र स्वामी, रसना नाम वखानी, श्रवणी कीर्तन सुनो दिन राती, हिरदे हर घर पानी, पंच जना गुर वसगत आने, तो उन मन नाम लगानी, जन नानक हर कृपा तारी, हर रामे नाम समानी, सारग महला चौथा, जप मन राम नाम पढ़ सार, राम नाम बिन थिर नहीं कोई, होर नेपल सा विस्तार रहाओ, क्या लीजे क्या तजिए बौरे, जो दिसे सोशार, जिस बेखिया को तुम अपनी कर जानो, ता छाड़ जाओ सिर पार, तेल तेल पल पल औद फुन घट, बूझ न सके गवार, जो कुछ करे जे साथ न चाले, तो सागत का आचार, संत जना के संग

सदगुर प्रसाद ताहे पूत जगत हों संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हों तिन सो जगत पाप रहाओ। जिस तन का तुम गर्व करत हो सो तन किसे न आप, खिन मैं छोड़ जाए बिखिया रस तौ लागे पछताप। जो तुमरे प्रभ होते स्वामी हर तिन के जप हो जाप, उपदेश करत नानक जन तुम कहो।

तित करे वाजे पंच शब्द वड़पाग मथोरा, तेन जन के सब पाप गए, सब दुख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तेन जन के हर मार कढे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु, जगदीश जपो मन बचन कर्म, हर हर आराधु, हर के जन साधु, हर राम बोल, सब पाप गवादु, नित नित जागरण करो, सदा सदा आनंद, जप जगदीशोरा, मन इच्छे फल पावो, सबे फल पावो, धर्म अर्थ काम मोख, जन नानक हर स्यो मिले, हर भगत तोरा, सारग महला चौथा, जप मन माधो मधुसूदनो, हर श्री रंगो परमेश्वरो, सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी, सब दुखन को हंता, सब सुखन को दाता, हर प्रीतम गुण गाओ हराओ, हर कड़ कटे कड़ बसता, हर जल तले हर बसता, हर थान सनंतर बसता, मैं हर देखन को चाओ, कोई आवे संतो, हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मुए मार्ग दिखलावे, तिस जन के हौ मल मल थोमा पाओ, हर जन को हर मिलया, हर श्रद्धा ते मिलया, गुरमुख हर मिलया, मेरे मन तन आनंद पए, मैं देखया हर राव, जन नानक को कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीशर कृपा पई, मैं अनदनो साध साध सदा हर जपया हर नाव, सारग महला चौथा, जप मन निरपो, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूर्त, आजोनी संप।

काल करे सवरता जो सबरी दमपान। प्रभु भुलाए उजड़ पाए नेपल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़िया जिस करी कृपा भगवान। हुन सतगुर सेव परम पद पाया उधरिया सगल विसवान। क्या हम कथ किश कथ नहीं जाने प्रभ पावे तिवे बुलान। सा संगत की तूर एक मांगो जन नानक पयो सरान। सारग महला पंजवा अब मोरो नचनो रहो। लाल रंगीला सहजे पायो सतगुर बचन लहो रगाओ। पुआर कन्या जैसे संग सहेरी तेरा बचन उपहास कहो। जो सुर जन ग्रे पीतर आयो तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कोठारी चढ़ो कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पय गए बारे तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तउ लो बजो मूर्त करी पलो। बजावन गारो ऊर सुधारो ता फिर बाजना पयो। जैसे कुंभ उदक पूर आन्यो ता को पिन दिष्टो। कहो नानक कुंभ जले मैं डारो अंबे अंब मेलो। सारग महला पंजवा अब पूछे क्या कहा। लेनो नाम अमृत रस नीको बाबर देश्यो गहे रहा रहाओ। दुलभ जन्म किरण काल पायो जातो कौडी बदलहा। काथूरी को गाक आयो लाद्यो कालर बिरख जिवगा। आयो लाभ लभन के ताई ऊंठा गौरी से उर्ज पहा। काज बादरे लाल खोई है फिर अवसर कद लगा। सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़े दास पजहा। आई मष्ट जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दर सानेगा। आन उपाओ न को सूज हर दासा सरणी पर रखा। कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले औगन मेड़ तरह। सारग महला पंजवा माई

दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए, पायो लाल अमोल नाम घर तोड़ न कतहू जाए, तम उपमा कौन बढ़ाई क्या गुण कौरी जाए, होत कृपाल दीन दयाल प्रभ जन नानक दास दिसाए।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहु विद उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं तीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरुख मिलाई, प्ररंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर्तव करता निमक निमक गुण गाही, अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुर्भाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रायन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परयो कुसुमाही, तर मराए जा पकस बगरे तो काल मुखा उड़ जागी, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन्म बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई, रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई, जे प्रसाद मिल गए प्रभु।

आग चले तनी सुख पाया, जिन से गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंध कूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जुरे।

साध समागम कोड़ बैकुंठे पाए रघाव दुलाब दे जब होत पुनीता जंकी त्रास निवारे महापत्ते पादक उतरे हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जुदरिया मान करो अब महाने बोलो पूर चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सास होई कर रहया दे नाओ बलिहारी रखाओ चौ दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी हा दे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ नाही किश मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा आप मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी हर एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अनना ही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगा नहीं राते सारग महला पंजवा अब मोहे लभ दे है घर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रघाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध विगास बबेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेमांग पेह आयो सब थान देश प्रे रोम न समसर लाग रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दिष्ट न करे रुचांग हरस चाहे प्रे प्रेम खुटेर ज्यो आल कमला लोभांग गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सरबांग गुरु नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लाग सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पय है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रघाओ तुम ही सुंदर तुम्हे सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक निमकन कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हे शत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सब कुरबान।

छूटते गुर की सुहागन हर पायो सुगड़ सुजानी। जे कर में बैसन नहीं पावत तो थान मिलो बासानी। उनके बस आयो भगत बच्छल जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन मानिया तब चूकी कान लुकानी। सारग महला पंजवा अब मेरो पंचा ते संग टूटा। दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाओ। बेखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख छू रूटा। बेखम गार कर पहुंचे नाही संत सांत पै लूठा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल आखूटा। जन नांग प्रव कृपा तारी तो मन में हारस कूटा। सारग महला पंजवा आप मेरो ठाकुर स्यो मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उर्जायो ज्यो जरमीना। रगाओ काम क्रोध लोभ मद मस्तर ए अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरड़ाए हर औखध गुर दीनो तो मिलो सगल पर बीना। गे तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हो खोई प्रभ दीना। कहो नारक मैं सहज कर पाया हर भगत भंडार खजीना। सारग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है। छुट्टे संघार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उधार है। रघाओ करे अरदास बहुत बेनंती निमक निमक सा महार है। हो कृपाल दीन दुख पंजन हा दे निस्तार। क्या ए भूपत बपरे कही है कहो ए किसनू मारे। राख राख राख सुखदाते सब नानक जगत तुमारे। सारग महला पंजवा आप मोहे तन पायो हर नामा। पाए अचिंत तृष्ण सा बुझी है यो लिखियो लेख मथामा। रखाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दे गिरामा। गुर कृपाल सौदा यो जोरियो हथ चिरियो लाल अगामा। आन बापार बंज जो करिए तेते दुग सहमा। गोविंद भजन के निरपय व्यापारी हरास नानक राम नामा। सारग महला पंजवा मेरे मन मिट लगे प्रे बोला। गुर पां पगर प्रभ सेवालाए सदयाल हर टोला। रघाओ प्रभ तू ठाकुर सरप्रद पालक मुए कलत्तर सहित सब गोला। मान तान सब तू है तू है एक नाम तेरा मैं ओला। ये तख्त बैसल है तो दास तुम्हारे कस बढ़ावे केतक भोला। जन नान के प्रापुरख बेधाते मेरे ठाकुर अगे अतोला। सारग महला पंजवा रसना राम कैत गुण सोहं। एक निमख उपाय सुमावे देख चरत मन मोहं। रघाओ जिस सुने मन होए रहस अत हृदय मान दुख जोहं। सुख पायो दुख दूर परायो बन आई प्रभ तोहं। केल गए मन निर्मल होई गए गुर काढे माया द्रोहं। कहो नानक मैं सो प्रापाया करण कारण समरथोहं। सारग महला पंजवा नैनो देखो चलत तुमासा। सबहु दूर सबहु ते नेरे आगम आगम कटवासा। रहाओ अपूल ना पूले लिखियो ना चलावे मता ना करे पचासा। खिन में सा सुवार बिनाहे भगत वशल गुण तासा। अंध कूब में दीप गबले हो गुरदे कियो परगासा। कहो नानक दर्श पेग सुख पाया ता पूर्ण होई आसा। सारग महला पंजवा चरणे गोविंद मार्ग सुहावा। आन मार्ग जेता हिताइए तेतो ही दुखावा। रघाओ नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे हस्त पुनीत टहलावा। हृदय पुनीत हृदय घर बस्यो मस्त पुनीत संत तूरावा। सर्बन दान नाम हर हर कहे जिस कर्म लिखिया तिन पावा। जन नानक कौ गुर पूरा पेट्यो सुख सहजे अनंद बिहावा। सारग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा। जे माल पिता सुभाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ।
अंधकूप गृह में तिन सिमरियो, जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी, सब तू है तू ही दिख, अमृत नाम पिया मन तृप्तिया, आगाहे रसन चखा, कहो नानक सुख सहज में पाया, गुर लाही सगल तिखा, सारग महला पंजवा, गुर मेल ऐसे प्रभु ते आया, भयो किरपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया, रहाओ जेते सास सास हम लेते, एते ही गुण गाया, निमख न बिशरे करी न बिसरे, सत्संगे जत जाया, हम बल बल बल बल चरण कमन कहो, बल बल गुर दरसाया, कहो नानक काहू परवाहा, जो सुख सागर में

कहो नानक मैं अतुल सुख पाया, जन्म मरण पय लाते, सारग महला पंजवा अरे मूड़े, आन कहे कत जाई, संग मनोहर अमृत है रे, भूल भूल बिख खाई रघाओ, प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते, ते सिंह रुच नहीं राई, मोन सिंह बाबर मन मोयो, झूठ ठगौरी पाई, पयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन सिंह बने आई, सगल निदान करे मैं पाए, कहो नानक जोत समाई, सारग महला पंजवा ओ अंग प्रेपीत चीत पह लरिया, जो तो बजन दियो मेरे सदगुर, तो मैं साज सी गरिया, अरगाओ हम भूले तुम सदा अपूला, हम पतत तुम पतत उदरिया, हम नीच बिरख तुम मैं लागर, लाज संग संग बिसरिया, तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया, गुर किरपाल नानखर मिलो तो मेरी सूख सेजरिया, सारग महला पंजवा मन ओए दिन स तन परवाना, सबल ते करी संयोग सुहावे, सदगुर संग ज्ञाना रखाओ, तन सुभाग तन सुहागा, तन दिल जिन माना, यो मन तुमरा सब गृह तन तुमरा, हियो कियो कुर्बाना, कोट लाख राज सुख पाए, एक निमक पेख दृष्टाना, जो कहो मुखो सेव के बैसिए, तुग नारग अंत न जाना, सारग महला पंजवा आप मोरो सहसा दुख गया, और उपाव सगल त्याग छोड़े, सदगुर शरण पया, अरहाओ सर्व सिद्ध कार्य सब सबरे, अंग रोग सगल ही खया, ओड पराध खिन मैं खौ पई है, गुर मिल हर हर कहया, पंच दास गुर वसगद कीने।

अब मेरो एक पुत्र सदा सहाई, मनमोर मेरे जी को प्यारो, कमल कहाँ गुन गाई रहाओ, खेल खिलाए लाड लाड आवे, सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बार्ग की न्याय, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई, कहो नानक मेल संत संगत ते, मगन पै लिवलाई, सार्ग महला पंजवां।

चोरी आंध कूप में पतत होत जग संत हो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

निर्वैरे संग वैर रचावे हर दरगे ओहारे आद जुगात प्रभु की वड्याई जन की पैज सवारे निरपो पय सगल पो मिटिया चरण कमल आधारे गुर के बचन जप्यो नाओ नानक प्रगट पयो संसार सारग मुहला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यो जानो त्यो रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रखाओ गुर उपदेश साध की संगत बिन स्यो सगल संताप मित्र सत्तर पेग समत बीचार्यो सगल सुमपाखन जाप तप्त बुझी शीतल आगाने सुन अनहद।

कलेश त्रासव नस साध संग हित लावे रहाओ। हर घर हर घर मन आराधे रसना हर जस गावे। तज अवमान काम क्रुद निंदा बास देव रंग लावे। दामोदर दयाल आराध हो

गाव जाके सूद परोए जनता तिस प्रभु का जस गाव हो। सिमर ठाकुर जिन सब कुछ दीना आन कहां पे जाओ, सबल सेवा स्वामी मेरे की मन बांझ।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अंध गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूबते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाया, सारग महला पंजवां, हर के नाम की गद छांडी, वेद पुराण सिमर साधु जन, खोजत खोजत कांडी रहाओ, शिव ब्रांच अर इंद्र लोक, तामे जल तो फिरिया, सिमर सिमर स्वामी पैसी तल, दुख दर्द प्रभ गिरिया, जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा, नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिले संत जन सेवा, सारग महला पंजवां, जेवे अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की,

मुक्त को दाता एक स्यों लिवलाओ, कहो नानक ताकी शरणाई देत सगल अपयाओ। सारग महला पंजवा होती नहीं कमन कज करनी, ए ओड़ पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रघाओ। पंच दोख शिद्र या तरम है बिखे ब्याध की करनी, आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरणी। अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय हरणी, मन बांछित चितवत नानक दास।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी उदम सगत।

छोड़ो कपट होए निरवैरा तो प्रभ संग निहारे सचतन वंजो सचतन संचो कबू न आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही अगन

सेव करत अनसेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने को सदा सदा कृपाल। सुख निदान नान प्रा मेरा साध संग तन माल। सारग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

दान मांगे साध संग उधार सारग मोहल्ला पंजवा विराजत आराम को प्रताप आद व्याद उपा सब नासी बिनसे तीने ताप रगाओ तृष्णा बुझी पूर्ण सब आशा चुके सोग संताप गुण गावत अचुत अबनासी मान तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मस्तर साधु के संखाप भगत वचल पे कट नगारे नानके माई बाप सारग मोहल्ला पंजवा आतुर ना बिन संसार तृप्त न होवत उकरी आसा इत लागो बिखिया शार रगाओ पाए ठगौरी आप पुलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमखना सिमरियो जम कंकर करत खुआर ओ कृपाल दीन दुख भंजन तेरिया संतां की रावार नानक दास दर्श प्रव जाते मंत्र को आधार सारग मोहल्ला पंजवा मैला हर के ना बिन जियो तिन प्रसाते आप पुराया विखे ठगौरी पियो रगाओ कोड जन्म प्रम तो बो भांति हित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहजना पेटिया ताकत आवे जाई राख लियो प्रसमृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दाते री शरणाई भवजल उतरियो पार सारग मोहल्ला पंजवा रावण कौ राम के गुण बाद साध संग त्यागे परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रगाओ सिमृत एक अचुत अबनासी बिरसे माया माद सहज आनंद अनघ तुन बाणी बौर न पय दिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेयो मनोर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारग मोहल्ला पंजवा कीने पाप के बहुकोट दिनस रहनी थकत नाही तते नाही छोट रगाओ मां बजर बिख व्याधि सिर

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रखाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम, जा कर हृदय वसे पए भंजन ते जान।

अनद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह हो रहाओ। प्यार कुंट दह दिस जल निध ऊन थाओ ना के हो, कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी सत सा संगे हो, सत तेजन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमे हो। सारग महला पंजवा गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार, ताजन मीत सगाई तुम ही तू मेरो परवार। गाओ घर मस्तक धार्यो मेरे मथे, साध संग गुण गाए तुमरी कृपा ते सफल पाए। रसक राम नाम त्याए आप चल नीव तराई, सतगुर कब हूं डोल तनाही। गुर नानक जा पय दयारा सर्व सुखा नद पाही। सारग महला पनवा निभगी नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए नितन बिखे माए अले परगाव। जी जंत सगर संतोखे अपना प्रत्याए, रतन जन्म अपार जीतेओ बौड़ जोन ना पाए। पय कृपाल दयाल गोविंद

मोह मद मातो सिमरत ना गए हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

बेअंत पार ब्रह्म स्वामी कर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम।

मोहेली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर ते आए अब रहे जमे मेल सार्ग महला पंजवा तंचना बो दत करा होम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रघाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार।

प्रीत लाए हर त्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग राओ रगाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोह एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पय गुर बिखम गार तोरी सारग मोहल्ला पंजवा मन बिरागेगी खोजती दरसार रगाओ साधु संतन सेवक प्रयो हीरे त्यायो आनंद रूपी पेख कै हो महल पावोगी काम करी सब त्याग कै हो शरण परोगी नानक स्वामी घर मिले हो गुरमनाभ होगी सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग कै मन संतन पाए बेचायो जात जन्म कुल खोइए हौ गावो हर हरी लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी गुरमुख उपदिसया नानक सेव एक हरी सारग महला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू कीड़ हस्त पाखान जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू ने बर्ण बर्ण ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू सारग महला पंजवा करत केल बिखे मेल चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर नौपरी चुनंत कार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत बिन गोपाल तोहे रगाओ तीन पौने लपटाए रही काज कर्म ना जात सही उन मत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काड़ दीनी जमकी फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा हर बिन तेरो को ना सहाई कां की माल पिता सुध बनता को काहू को पाई रगाओ तन धरणी पर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई नानक कहत जगत सा मिथया जो सुपना रहे नाई सारंग महला नामा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या जग में कू रहन न पावे एक आवे एक जाही रगाओ का को तन तन संपत का की का स्यो निहो लगाई जो दिसे सो सगल बिनासे जो बादर की शाही तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सो सुपने पी नाही सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे माया माद बिखे अरस रचियो आराम सन नहीं आवे रगाओ यो संसार सगल के सुपनो देख कहां लोभावे जो उपजे सो सगल बिना से रहन न को उपावे मितया तान साचो कर मान्यो ए विद आप अंधावे जन नानक सो जग मुक्ता आराम भजन चित लावे सारंग महला नामा मान कर कभू न हर गुण गायो बिख्या सकतरे हो निसबासर इनू अपनो पायो रगाओ गुर उपदेश सुनियो ने कानन परदारा लपटायो पर निंदा कारण वो तावत समझो ने समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जेबद जन्म गवायो कहे नानक सब अवगुण मोह मैं राख लियो शरणायो राग सारग अष्टपदियां महला पहला कार पहला एक ओहंकार सदगुर प्रसाद हर बिन
ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇਰਾ ਜਾ ਜਾਚੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਰਗਾਓ। ਹਰ ਕੀ ਪਿਆਸ ਪਿਆਸੀ ਕਾਮਨ, ਦੇਖੋ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਧਰਨਾਥ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਰੋਜਾਨੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ। ਗਣਤ ਸਰੀਰ ਪੀਰ ਗਏ ਹਰ ਬਿਨ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਹਰ ਪਾਈ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰ ਸਿਓ ਰਾਂ ਸਮਾਈ। ਐਸੀ ਰਫਤਰ ਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਬਿਸਮ ਪਏ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨੋਹਰ, ਨਿਰਭਉ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੁਨ ਨਿਚਲ, ਘਟੇ ਨਾ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਕੋਈ ਨਿਰਧਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਪਏ ਸੁਨ ਸਜਣੀ, ਦੂਤ ਮੋਏ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਜਬ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਬ ਕੀ ਤੈਸੀ, ਅਰੰਗਲ ਪਈ ਮਨ ਭਾਈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਪ ਸਦਾ ਲਿਵ ਹਰ ਸਿਉ, ਜੀਵਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਰਤਾ ਪਏ ਰਾਗੀ, ਨਿਰਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਸੁਧਰਸ ਨਾਮ ਮਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਨਿਰਕਰ ਤਟ ਗੁਸਾਈ। ਤੈ ਹੀ ਮਾਨ ਜੈ ਹੀ ਤੈ ਰਾਖਿਆ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈ। ਸਨਕਾਦਕ ਬ੍ਰਹਿਮਾਦ ਇੰਦਰਾਦਕ,

कोड़ कल्प के दुख बिनासन, साध दृढ़ाए नंबेरा रखाओ, क्रोध निवार जले हो ममता, प्रेम सदा नवरंगी, अनपो बिसर गए प्रो जात्या, हर निर्मायल संगी, चंचल मत त्याग पव पंजन पाया, एक शब्द लिवलागी, हर अचाख त्रिखा निवारी, हर मेल लहे बड़पागी, अपारत सिंच परे सुबर सार, गुरमत साच निहला, मरत नाम रते ने केवल, आजुगा दयाला, मोहन मोह लिया मनमोरा, बड़े पाग लिवलागी, साज विचार केलब दो काटे, मन निर्मल अनरागी, गहर गंभीर सागर रतनागर, अवर नहीं अन पूजा, शब्द विचार परम पौ पंजन, अवर न जान्या दूजा, मनुआ मार निर्मल पचीनिया, हर सरते अदकाई, एक से बन में अवर न जानना, सदगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एक को जान्या, तुबर परे नाही चित डोले, मन ही ते मन मान्या, गुर प्रसादी अकथो कथिये, कहो कहा वे सोई, नानक दीन दयाल हमारे, अवर न जान्या कोई, सार्ग भला तीजा, अष्टपदियां कर पहला, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, मन मेरे हर के नाम वडाई, हर बिन अवर न जाना कोई, हर के नाम मुक्त गद पाई रगाओ, शब्द पौ पंजन जमकाल निखंजन, हर से ती लिवलाई, हर सुखदाता गुरमुख जाता, सहजे रहा समाई, भगतां का भोजन, हर नाम निरंजन, पहनन भगत बढ़ाई, निज करवासा सदा हर सेवन, हर दर शोभा पाई, मानमुख बुद्ध काची मनुआ डोले, अकथ न कथे कहानी, गुरमत नेत्र घर मन वसया, अमृत साची बानी, मन के तरंग शब्द निवारे, रसना सहज सुपाई, सदगुरु में रही गे सदे अपने, जिन हर से ती लिवलाई, मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे, हर चरणी चित लाई, हर सर सागर सदा जन निर्मल, नावे सहज सुपाई, शब्द विचार सदा रंग राते, होमे तृष्णा मारी, अंतर ने केवल रविया, हवे आत्म राम मुरारी, सेवक सेव रहे सच राते, जो तेरे मन पाणे, दुबदा मैल न पावे जग चूठी, गुण अवगुण ना पछाणे, आपे मेल लय अकाथ कथिये, सच शब्द सच बाणी, नानक साचे सच समाणे।

पंजन गुरमुख एको डीठा रगाव कोट कुटंतर के पाप बिनासन हर साचा मन पाया हर बिन अवर न सूजे दूजा सतगुर एक बुझाया प्रेम पदार्थ जिन कड़ वस्या सहजे रहे सुमाई शब्द रते से रंग चिरूले राते सहज सुपाई रसना शब्द विचार हराती लाल पई रंग लाई आराम नाम ने केवल जानिया मन तृप्त्या सांत आई पंडित पढ़ पढ़ मुनि सब थके परम पेघ थके पेघ तारी गुर प्रसाद निरंजन पाया साचे शब्द विचारी आवा गौण निवार सच राते साच शब्द मन पाया तद गुर सेव सदा सुख पाएगे जिन विचों आप गवाया साचे शब्द सहतुन उपजे मन साचे लिवलाई अगमे गोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई एक समय सब जगतो वर्त विरला एक पछाणे शब्द मरे ता सब के सूजे अनदन एको जाने जिसनु नदर करे सोई जन बूझे होर कहना कथन ना जाई नानक नाम रते सदा बैरागी एक शब्द ले बिलाई सारग मला तीजा मन मेरे हर की अकथ कहानी हर अंदर करे सोई जन पाए गुरमुख विर ले जानी रखाओ हर गैर गंभीर गुणी गहीर गुर के शब्द पछानिया बहुविध कर्म करे पाए दूजे बिन शब्दे बहुरानिया हर नाम नावे सोई जन निर्मल फिर मैला मूल न होई ना बिना सब जग है मैला दूजे परम पद खोई क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी मैं ता बूझ न पाई होए दयाल कृपा कर हर जियो नम होए सकाई सच्चा सदाता कर्म विदाता जिस पावे नाए लाए गुरु द्वारे सोई बूझे जिसनु आप जाए देख विस्माद जो मन नहीं चेते आवा गौण संसारा सतगुर सेवे सोई बूझे पाए मोह द्वारा जेंदर सूझे से कदे ना बिगाड़े सतगुर बूझ बुझाई सत संजम करनी किरत कमावे आवन जान रगाई थे दर साचे साज कमावे जिन गुरमुख साज

दुख च जम्मण दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पड़ पड़ करे पुकार दुखिया पंडा खुलिया सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए मोहल्ला पहला नानक दुनिया पस रंग पसु हू पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देहे जा जियो विच्चों कड़िये पसु परे आ जाए अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे नाए सुने

मांग मांग पहने काए, अंधी कमी अंध सजाए, भुखिया दे ना मरदिया रखे, अंधा झगड़ा अंधी सत्थ है, महला पहला सभे सुरती जोग साब, सभे वेद पुराण सभे करने ताप साब, सभे गीत ज्ञान सभे बुद्धि शुद्ध साब, सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर साब, सब खुशियां सब खान सभे मानस देव साब,

महा सब सब धरती सब भार सबे पानी पौन सब सब अग्नि पाताल सबे पुरिया खंड सब सब लो लो आकार हुक्म न जापी केतड़ कह न सकी जयकार आख है थके आख आख कर सिवती विचार तिरण न पायो बपड़ी नानक कहे गुवार महला पहला अखी परने जे फिरा।

सुरत उपजे नामे मत होई, नाय मने गुण उच्चरे नामे सुख होई, नाय मने प्रम कटिए फिर दुख न होई, नाय मने साराई है पापा मत तोई, नानक पूरे गुरते नाओ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। सत्र वेद पुराण पढ़ंता पूकारंता अजाणंता, जा बूझे ता सूझे सोई, नानक आखे पूक न होई। महला पहला। जा हो तेरा ता सब कुछ मेरा, हो नाही तू होवे आपे सकता आपे सुरता, सकती जगत परोवे आपे भेजे आपे सदे, रचना रच रच वेखे नानक सच्चा सच्ची नाई, सच पवे तुर लेखे पौड़ी, नाम निरंजन अलख है क्यों लखया जाई, नाम निरंजन नाल है क्यों पाई गे पाई, नाम निरंजन वरतदा रव्या सब ठाई, गुर पूरे ते पाई है हिरदे दे दिखाई, नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिए पाई। श्लोक महला पहला। कल होई कुत्ते मुही, खाज हुआ मुरदार, कूड़ बोल बोल पौंकना।

नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जैसी परम पवे संसार अमृत बाणी तत्व खाणी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई हुक्म साज।

सच उगवै दरगे पाई गेताओ वेद व्यापारी ज्ञान रास करमी पल्ले होए नानक रासी बारा लद न चलिया कोए पौड़ी निम बिरख बहु संचिए अमृत रस पाया बिसियर मंत्र विसाईए बहु दूध पियाया मानमुख अपिन ना पिजई पत्थर ना वहाया बिख में अमृत सिंचिए बिका फल पाया नानक संगत मेल हार साब बिख ले जाया श्लोक महला पहला मरना मुहूर्त पुछे पुछी थितना वार एक नी लद्या एक लद चले एक नी बदे पार एक ना होई सागती एक ना होई सार लस्कर सने दुमामिया छुट्टे बंक द्वार नानक ढेरी शार की पी फिर होई शार महला पहला नानक ढेरी टह पई मिट्टी संधा कोट पीतर चोर बहालिया खोट वे जिया खोट पौड़ी जिन अंदर निंदा दुष्ट है नक वड्डे नक वढाया महाकरूप दुगिए सदा काले मोह माया पालके उठ नित पर दर्भ हर नाम चुराया हर जियो तिनकी।

काम क्रोध तृष्णा उच्चर दसमी दसे द्वार जे ठक एकासी एक कर जाने द्वादशी पंच वसगत का रख तो नानक मन माने

फिर होए ना बिनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख पर गासा, ओए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अहंकार, सबदे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुरु का पाणा मन लै शब्द रखे उरतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी,

माया कारण श्रम अत करै, सो माया ले गाडे तरे, आत संचे समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जनते ठाकुर, खेल परे है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख तात्री मोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंदे, तौ फुन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगतनी उपजी, भूखे दान ना दीना रखाओ, कामना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिर इस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जे ही रुत काया सुख तेह, तेहो जे ही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नावे रुत के ही। मलार महला पहला।

जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाउ। नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, आन दिन भगत सुहावी। मुक्त पए गुरदर्श दिखाया, जो जोग भगत सुपावी। हम थारे तिर पावन जग तुमरा, तू मेरा हो तेरा। सतगुर मिलया निरंजन पाया, बहुर ना पव जल फेरा। अपने पिर घर देख वेगासी, तौ तन साज सीगारो। अकुल निरंजन स्यों सच साची, गुरमत नाम आधारो। मुक्त पई बंधन गुर खोले, साबद

अन दिन नाम समाल भवना करता एक तू नित कर देख विचार एक गुरमुख आप मिलाया बगसे भगत भंडार तू आपे सब ते जानदा किसे आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नदरी पाया जाए अन दिन हर हर उचर गुर कै सहज सुपाए।

मन की विद सतगुर ते जाने अनदन लागे साधे घर स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी।

पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सो पाए, नामहीन बिन से दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुवद थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। बिख्या मायर बिख्या।

शीतल होए, जो जुग शोभा निर्मल जन सोए, नानक गुरमुख विरला कोए, राग मलार महला चौथा, कार पहला चौपदे एक ओंकार।

आओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पूघर राय, दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक ले

हम एक गिनथ बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रखाओ। उनके संग मुए प्रवचित आवे, संत प्रसाद मुए जागी। तुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। इओ मन देख किए संत मीता, किरपाल पए बड़भागी। महा सुख पाया बन ना साको, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा, माई मोहे प्रीतम देहु मिलाई। सगल सहेली सुख पर सूती,

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण।

तेरे आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरने वारे बौर न कतहू ताया। मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया। मलार मुहल्ला पंजवा विशरत क्यों जीवे ओए जीवन। किते उलास आस मिलबे की चरण कमल रस पीवन रखाओ।

सेवक पूर्ण भगत चेरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तान होत बेरानो। लोग दोराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रतारो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा, दुष्ट मोए बिख खाई री माई। जिसके जीते नहीं रख लीने, मेरे प्रभु को कृपा आई रहाओ। अंतर जामी सामे वरत, ता पौ कैसा पाई। तंग सहाई छोड़ न जाई, प्रदीसे सब नहीं ठाई। अनाथा नाथ दीन दुख पंजन, आप लिगे लड़ लाई। हर की ओट जीवे दास तेरे, नानक प्रभु शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै। दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मलीजै रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो।

बाजे बजे मृदंग अनाद कोकलरी आराम नाम बोले मदर बैन अत सोईया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रे अमोग तैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रयो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने प्रमे बने।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललत गुनाग अंक पांत बोविध रूप दिखावनी नीकी गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी साध संगरा मैया रस पायो नानक जाके पावनी नीकी मलार महला पंजवां गुरप्रीत प्यारे चरण कमल अंतर तारे रहाओ दर्श सबलो दर्श पेख्यो गए किल विख गए मन निर्मल उजियारे बिस्म बिस्मे बिस्म पई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक सरण द्वारे मलार महला पंजवा बरस सरस आग्या होय आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो मिल संत

गाई प्रयो प्रयो करे सबे है जेती गुर पावे प्रयो पाई प्रयो नाले सदगी सच संगे नदरी मेल मिलाई सब मैं जियो जियो है सोई काट काट रहा समाई गुर प्रसाद कर ही परगासया सहजे सहज समाई अपना काज सवार हो आपे सुखदा ते गोसाई गुर प्रसाद कर ही पिर पाया तो नानक तबत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग

इहो जग है बपरो अरंगन चेन चतराई, नानी सी बूंद पवन पत खोवे, जन्म मरे खिनताई, नदी उपकंठ जैसे कर तरवर, सरपन कर कर माही, उल्टी नदी कहां कर तरवर, सरपन डसे दूजा मन माही, गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिखिया गुरमत जारी, मन तन हेम पै सज पाया, हर की भगत ने।

मान रे सतगुर सेव समाए वडे पागुर पूरा पाया हर हर नाम त्याए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाई हर आपे दे आधार हर अपने पाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर के पाने सतगुर पेटिया सब जन्म सवारन हार वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए वाह वाह कर प्रसाद आईए तेस जेवड़ अवर न कोए आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए हर कृपा ते सतगुर पाईए भेटे सहज सुपाए मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदां का अभ्यास हर नाम चित ना आवई न निज कर होवै वास जम काल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए नदर करे गुर पेटिए हर नाम वसे मन आए नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए मरार महला तीजा अष्टपदी

गुर के शब्द विचारी है, गुण में रहे समाए, अपना आप तोलसी, आपे मिले मिलाए, तिसकी कीमत ना पवे, कहना किशु ना जाए, हों बलिहारी गुरे अपने, जे सच्ची बूझ दित्ती बुझाए, जगत मुस्ते अमृत लुटिए, मनमुख बूझ ना पाए, विणनावे नाल ना चरसी, जासी जन्म गवाए, गुरमती जागे तिनी कर राखिया, दूता का किश ना वसाए, सलोक महला तीजा, बा बीहा ना बिललाए ना तरसाए, यो मन खसम का हुक्म मन, ना हुक्म मने तिख उत्तर है, चढ़े चवगलवन महला तीजा, बाबीहा जल में तेरा वास है, जल की माए फिराहे, जल की सार ना जानई, ता तू कुकण पाहे, जल थल 14 वर्ष दा, खाली को थाओ नाहे, एते जल वर्ष दे तिख मरे, भाग तिना के नाहे, नानक गुरमुख तिन सोजी पई, जिन वसिया मन माहे पौड़ी, नाथ जती सिद्ध पीर किने अंत ना पाया, गुरमुख नाम ते आए तुझे समाया, जुग शक्ति गुबार तिस ही पाया, जला बिंब असराल तेरे वरताया, नील अनील अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद ओख तिहाया, दुनिया कैसर काल दूजा पाया, रखे रखनहार जिन शब्द बुझाया, सलोक महला तीजा, यो जल सब ते वरसदा, वरसे पाए सुखाए, से बिरखा हरियावले, जो गुरमुख रहे समाए, नानक नदरी सुख होए, इना जनता का दुख जाए, महला तीजा, पिन्नी रैन चमकया, वुठा शैबर लाए, जित वुठे, आन तन बौद उपजे, जां सो करे रजाए, जिर खादे मन तृप्तिय, जियां जुगत समाए, यो तन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए, ज्ञानियां का तन नाम है, तद ही रहे समाए, नानक जिनको नदर करे,

ते पौ उपज पाइये मोह द्वार, पाए ते सहज पाइये मेरे ज्योति जोत अपार, पाए ते पै जल लंघिए गुरमति विचार, पाए ते निरपो पाइये जिदा अंत न पारावार, मनमुख पै की सार ना जाननी तृष्णा जलते करे पुकार, नानक नावे ही ते सुख पाया गुरमति उरतार, सलोक महला पहला रूपे कामे दोस्ती भुखे साधे गंड, लबे माले कोल मिल मचल ऊंगे साउण पलंग, पौके कोप खुआर हुए

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छे सर्व शास्त्र बहुरूपिया

पाल सहस्र फनी बासक से जो वालुआ अठारे पार बनस्पति मालनी छिनमें करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नग पर सेव जाचे सुरसरी सप्त समुंद जाचे कड़थली एते जी जाचे वर्तनी सो ऐसा राजा तिर पवन तनी जाचे कार निट वर्ती अर्जन त्रू प्रहलाद अम्बरीक नारद निज सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बाण वहिला एते जी जाचे है करी सर्व व्यापक अंतर हरी।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे

गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हार हो किरपान रखाओ। तेरे जन त्यावे एक मान एक चित, ते साधु सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस करे प्रभ तेरिया मेरे साधु साध जना, गुर सदगुरु भगवान, जिन कै हिरदे तू स्वामी, ते सुख बल पावे, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हार।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार है। अरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पाव जल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमूला,

यार सहज समाज समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो किरपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जब तीर बिनसै मोह परम दुख पीर अरहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कद पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मने सुख पाई है साध जना मिल हर जस गाई है रखाओ कर कृपा प्रभ दे बसेरो चरण संतन के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रापरसन रसना हर हर पूजन तृप्तानी अखियन कौ संतोख प्रादर्शन रखाओ करनन पूरयो जस प्रीतम कारमल दोख सगल मल हरसन पामन तामन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गई पूर्ण अबनासी आन उपाव थगत नहीं करसन कर गए लिए नानक जन अपने अंधकोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा ओ कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीज अनक बरिया अरहाओ अंग मत अनरत कोमित हित प्रीतम पेखत प्रमत लाह गरिया अनित व्यवहार अचार विधहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उधर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोविंद त्याग आन लाग गए अमृत उडार भूम पाग गए बिखे रस्यो आसक्त मूड़े ताहे सुख मान काम क्रोध लोभ व्यापेओ जन्म ही की खान पातत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा।

संतना हर संतना हर संतना की रेन कियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़ो।

संगा आठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जरा पंच भागे चोर सहज सखनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रगाओ जैसी करी प्रामोस्यो मोस्यो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिले जो पावतो जन नानक ठाकुर रहो समाए।

बहुरंगी सब एकत बचन चलावै गो गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावै गो गुरमुख जाए मिले निज महली अनहद शब्द बजावै गो जी जंत सब सहट्यो पाई गुरमुख शोभा पावै गो बिन गुर भेटे को मैल न पावै आए जाए दुख पावै गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो सदगुर मिलत महा सुख पाया।

रामायण सगले जंत पजो गोपालय, जब तब संजम पूर्ण कालय, नित पजो स्वामी अंतर जामी, सबल जन्म सबाया, गोविंद गायगे नित प्याई है, प्रवाण सोई आया, जब ताप संजम हर हर निरंजन, गोविंद तन संग चालय, बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रतन बंधौ पालय, मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मेरे परमानंदा, प्रमिले स्वामी सुख गामी, इस मन की पुनिया, बजी बधाई सहजे समाई, बौड़ दुख ना रुनिया, ले कंठ लाए सुख दिखाए, विकार बिन से मंदा।

रूतम घर प्रभ नाम है, गुर भजन सुभागे लीता, दुख दाल दिल सबो लह गया, जा नाव गुरु घर दीता, सब सेवो मोहनो, मन मोहनो, जग मोहनो, जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा, मन अंतर हो में रोग है, ब्रह्म फूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग वंजाए, मिल सदगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जा देखा हर नैने, नानक सो प्रामय मिले, हो जीवा साध सुने पौड़ी, जगन्नाथ जगदीशर करते, अपरंपर पुरख अतोल, हर नाम ते आवो मेरे गुरसिखो, हर उत्तम हर नाम अमोल, जिन त्याया हिरदे दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल, वडभागी संगत मिले, गुर सतगुर पूरा बोल, सब त्यावो नर नारायण नारायण, जित चूका जम झगड़ चघोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार, नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन, जे कर दूजा देख दे, जन नानक कढ चन पौड़ी, जल थल मई अल पूरनो, अपरंपर सोई, जी जंद प्रतपालदा, जो करे सोई, मात पिता सुत प्रात मीत, तिस बिन नहीं कोई, घट घट अंतर रव रहया, जप्यो जन कोई, सगल जपो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रपाया रंग, जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दर गए।

सदगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रगाव, बसे कटा कड लीपना शीपे, बंधन मुक्ता जात ना दिसे, पानी माहे देख मुख जैसा

प्रसाद रामा राम रामे अंत न पाया हम बारक प्रदपारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया अरहाव हर के नाम असंग अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत भोकिनी एक तिल ने कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गावे गुण गोविंद अंत न पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहुत

ओंकार सतगुर प्रसाद पारब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाचे सुख सागर पवन तरण घर चिंता मणे रखाओ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोविंद ते निरपो जिन श्री राम त्याया गुरमत मुरार हर मुकंदे जगदीशर चरण सरण जो आए ते जन पावन पार परे भगत जना की पैज घर राख जन नानक आप घर कृपा करे राग कल्याण महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हमारे एक कृपा कीजे अलम करंद चरण कमल स्यों मन फेर फेर।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को था।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरीजै। महा अपाग अपाग है जिनके जिन साधु तूर न पीजै। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे डंड तरमराए का दीजे। सब तीर्थ वर्त जग

रामा राम राम पूज करी जे मन तन अर्प तरो सब आगे रस गुरमत ज्ञान दरड़ी जे रखाओ ब्रह्म नाम गुण साग तरोव नित चुन चुन पूज करी जे आत्म दियो दियो हुए आत्म रस लागे पूज करी जे विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल बिचर बिचर रस पीजे गुर प्रसाद पदार्थ पाया सदगुर को यो मन दीजे निर्मोल कत हीरो नीको हीरे हीर बेधीजे मन मोती साल है गुर सबदी जित हीरा परख लईजे संगत संत संग लग ऊचे जो पीप पलास खाए लीजे सब नरमे प्राणी उत्तम होवे राम नामे बास बसीजे निर्मल निर्मल कर्म भोकीने नित साखा हरी जड़ीजे धर्म फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया बेकार बाजग दीजे एक जोत एको मन वसया सब ब्रह्म धृष्ट एक कीजे आत्म राम सब एक है पसरे सब चरण तले सिर दीजे ना बिना नगटे नर देखो तेन कस कस नाक वढ़ीजे सागत नर अंकारी कहिए बिन नावे त्रिग जीवीजे जब लग सास सास मन अंतर तद बेगल सरन परीजे नानक कृपा कृपा करता रहो मैं साधु चरण पखीजे कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तुवीजे केल बेख दैन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा कीजे रखाओ मंगत जन दीन खरे दर ठाडे आतरसन को दान दीजे त्रागे त्राए सरन प्रव्याय मुख को गुरमत नाम जरड़ीजे काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उड़ जूज करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुरपूरा काड कढ़ी जय अंतर अगन सबल अद बिघया हे शीतल शब्द गुर दीजे तन मन सांत होए अदकाई रोग काटे सूख सवीजे जो सूरज करण रव्या सर्बठाई सब घट घट राम रवीजे साधु साध मिले रस पावे तत निरकर बैठिया पीजे जन कौ प्रीत लगी गुरसेती क्यों चकवी देख सुरीजे निरखत निरखत रहन सब निरखी मोह काढ़े अमृत पीजे सागत स्वान कही गए।

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद अराग।

की वास बनल पसौरे ता चरण लेव रही है। गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाइये गुरमुख नानक सच समाइये गुरमुख निज पद पाइये प्रभाती मुहला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार पढ़ पढ़ पावे मान आपा मध्य आप प्रगासया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान।

मांगो हर गुण नानक रब तरह प्रभाती महला पहला आवत करे ना राख्या जावत क्यों राख्या जाए जिते होवा सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो करे सोई पर होएबा अवरण करना जाए रहाओ। जैसे हरड़ की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही यो खेल खसम का जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी।

पाई, सदा जल निर्मल मैल ना लागे, सच नाम चित लाई। सुख सीगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखुट भंडार भरे कदे टोट ना आवे, सदा हर सेवो पाई। आपे करता जिसनू देवे, तिस वसे मन आई।

आए बहुरंगी सिद्ध उपाय प्रखेल किया कर कर वेखै करे कराए सर्ब जिया नू रिजक दिया कली काल में रव्या राम घाट घाट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विच कल युग कट कट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुरसरणाई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़।

तो नरक पर एको सब एको प्रवर्त सब एक स्ते उत्पत चल नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रलै।

लेव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ। आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान। कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान। वड़े भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान। गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान। प्रभाती मोहल्ला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले, सवरैन संभाले हर गाल। हमरे प्रभ

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम।

एको कर जान एहा मत शब्द है सार वे दुविधा माथे पवे शार करणी कीर्त गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवित मर जान नानक नदरी नदर पछाण।

हर मंदर एहो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, मानमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जीव साजिया, रख्या हुकम सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना, ओए ना मेटन हार, शब्द चीन सुख पाया, सच्चे नाए प्यार, हर मंदर सबदे सोना, कंचन कोट अपार, हर मंदर एहो जगत है, गुर बिन को रंगधार, दूजा पाओ कर पूज दे, मानमुख अंध गवार, जिथे लेखा मंगिए, जिथे दे जात ना जाए, साजर ते से उबरे, दुहे दूजे पाए, हर मंदर में

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर कड है मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाई है मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपज दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

के पांडे नाग पोज कुंभारे समय सच्चा एको सोई इसका किया सब कश होई हुंग पछाने सो एको जाने बंदा कहिए सोई अलो अलख न जाई लखिया गोर गुड़दी ना मीठा कहे कबीर मेरी शंका नासी सर्व निरंजन डीठा प्रभाती वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना विचारे जो सम एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे मुल्ला कहो न्याओ खुदाई तेरे मन का परमन जाई रहाओ पगर जीव आनिया दे बिनासी माटी को बिस्मिल किया ज्योत स्वरूप अनहात लागी कहो हलार क्या किया क्या उजू पा किया मोत होया क्या मसीत सिर लाया जो दिल में कपट निवाज गुजारो क्या हज का बेजाया तू ना पाक पाक नहीं सूझिया इसका मर्म न जानिया कहे कबीर पिस्त ते चूका दोज किस्यो मन मानिया प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवा कर अद पद आसमाई सिद्ध समाज अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई लेहो आरती हो पुरख निरंजन सब गुर पूजो पाई ठंडा ब्रह्म निगम बिचारे अलख न लखिया जाई रखाओ तत तेल नाम की आबाती दीपक दे उजियारा जो तलाए जगदीश जगाया बूझे बूझनहारा पंचे शब्द अनहद बाजे संगे सारंग पानी।

गुसाई मेरा प्रभ रविया सर बैठा ई रघाव माने हाट माने पाठ माने है पासारी माने बासे नाना भेदी परमत है संसारी गुर के शब्द इहो मन राता दुबदा सह सुमाणी सब हुक्म हुक्म है आपे निरपो समत बिचारी जो जन जान पदे पुरखोत्तम ताची अवगत बाणी नामा कहे जग जी मन पाया हिरदे अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया सर्व निरंतर राम रविया राव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रामैया हरहाओ बावन बिखू बाने बिखे पालते सुख लागला।

लेहे अंत बार संग तेरे यह एक जात है विख्या जो विसार प्रभ कौ जसहिए तार नानक जन कै पुकार अवसर विहात है जय जावंती महला नामा रे मन कौन गद होए है तेरी ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान देखे सो अत लुभान मत ना हिन फेरी रहाओ मांस को जन्मलीन।

पूर्ण पुरुष भगवान है, भगत वत्सल करुणामय है, कट कट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है।

सत्संग कल पंडित कंठ रमणी आराम राम माला हस ऊच प्रेम धारणी जीपन जो उत्तम श्लोक उदरणंग नयन नंदनी गुरमंत्र हीनस जो प्राणी।

दुर्लभं तरंग रूपं नच दुर्लभं दुर्गराजन है नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वश अंबर है नच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभं बनता विलास है नच दुर्लभं विद्या प्रवीण नच दुर्लभं चतुर चंचल है दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धयं साध संग कृपा प्रभं जात कत है तत दृष्टं।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित है उपदेशं।

कंद मूलं बसंते समीप कह रह तत्रगते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते शलं शिदरं कोड़ विघ्नं अपराधं किल बिख मलं।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतः तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सुखण है दुर्वचन भेद परम ताकत पिसरंगता सुजन है अस्तित्तं सोग हरखं पय खीणंगता निर्भवय पय अटवीयं महानगरवासं धर्म लखेण प्रामय साध संगम राम राम रमणं

नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर हे कामं नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चित हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण है।

तहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद है संत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़ पागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर है विखम स्थान मन मोह मदरंग मां असाध पंज तस्कर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरंग अगम तीर नय लंघन है पज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मधुर मानुखयंग हृदय पूम वायरण निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयंग सत हदंग परम बादंग अवर तिथ है सुध अशरण गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोर मतंग बलवंत बलाद कारण है चरण कमल न पजंत तरण समान तिग जन्मन हे पीर का ग्रस्ते गोविंद सिमरण तोयंग तने नानक अनकबार नमो नम तिरणंग मेरंग सैकंगता हरियंग बूढ़ंगता तरियंग ऊणंगता परियंग अंधकार कोल सूर उजारंग विनवंत नानक हर गुरदयारंग ब्राह्मण संग उदरणंग ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्म रतंग संसार गहंग ते नर नानक नेफल पर दर्द हेरणंग भो विघ्न करणंग उच्चरणंग सर्वजीत है लौ लय तृष्णा अत्यप्त मन माय कर्म कर्त सूकर है मते समेव चरणंग उदरणंग पय दुत्तर है अनेक पातक हरणंग नानक सा

रत्नं अरचनंत सोमबरंगण रोग सोग प्रयोगं नानक सुख ना सुपन है उनहे मोहल्ला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद आद कलम अगम मस्तक लेखावती उर्दर है ओ सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन न जाए मुखों तुहारिया मोई देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा अरती सब सी गार यो जियो सब देवा आस पिया सी सेज सोकंत वशाई है हरगा मस्तक हो वे भाग ता साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सबे केश साजया तोले किए सीगार के अंजन पाजया ये करया वे कंत ता सब की पाई है हरगा कंते बा सीगार सा बिरथा जाई है जिस करव सया कंत सावड भागने जिस बनिया हब सीगार साई सोहागने और सुती होए अत्यंत मन आस पुराइया हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया आसा इत्ती आसक आस पुराइये सदगुर पय दयाल ता पूरा पाईये मैं तन अवगुण बहुत के अवगुण छाया हर हां सतगुर पय दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत त्याया तुत्र एव संसार सतगुरु तराया मिटिया आवा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया मेरे हाथ पद्म आगन सुख बासना सखी मोरे कंठर तन पेख दुख नसना पासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद सिद्ध नव निद पसे जिस सदा कार पर तेरे रावण जाहे चेई ताला जी है नित प्रभ हृदय पर दर्ब छिद्र कद ठाकी है हार गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई

कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए, इउं कहे रमे कबीर, कबीर मन निर्मल भया।

हर जस लिखन ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे, हृदय बसे गोपाल। कबीर रमैया कंठ मेल, चूक है सर्ब जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं, मंदर दे जराए। पंचो लड़के मार के रहे राम ल्यो लाए। कबीर ऐसा को नहीं,

लोग सुबाया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दे दिस जाए। जो जैसी संगत मिले, सो तय सो फल खाए। कबीर जा को खोजते, पायो सोई ठौर। सोई फिर के तू पया, जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की,

कस्तूरी भया पवर पए सबदास। ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गय गज परे कुटाम।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निशंक, जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे

चोर सहारे शब्द की ताश गुरु में दास कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े साई ना बहरा होवे जां कारण तू बांग देह दिल की पीतर जोए शेख सबूरी बहारा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए दिल में साई

टोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए, ना हर पजयो ना खत फटियो, काल पहुंचो आए महला पंजवा। कबीर कुकर पौकना तरंग पिछे उठताए, करमी सतगुर पाया जिन हो लिया छिड़ाए, महला पंजवा। कबीर धरती साध की।

का सफल फलंत पीर साधु संग प्राप्ति लिखिया हुए ललाट मुक्त पदार्थ पाई है थाक ना अब घट काट कबीर एक घड़ी आदि करी

सुरापान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे स्वर्ग खेलो पीसो किसी लखावो नाहे आर जाम चौसठ करी।

मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश गुण ही परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश तत्ती तोय ना पल्लवे जे जल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागन रब दी चूरेंदी चूरे जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज हंस उड़र कोदरे पया।

फरीदा इट सराणे पोए सवन कीड़ा लड़े ओ मास केतड़िया जुग वापरे एकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी सुवनवी टुटी ना गर लज अजराइल फरिश्ता कहे करनाठी अज फरीदा पन्नी कड़ी सुवन।

तन तपे तनूर ज्यो बालन हड बलन पैरी तक्का सिर जुला जे मुंह प्री मिलन तन नत पाए तनूर ज्यो बालन हड ना बार सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल हों टूड़ें दी सजना सज्जन महंडे नाल नानक अलख ना लखिए गुरमुख दे दिखाल हंसा देख तरंदियां बग्गा आया चाओ डुब मोए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ मैं जानिया वडहंस है ता मैं कीता संग जे जाना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर करे जे तिस पावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास क्योतन लहरी गढ़ते सच्चे तेरी आस कौन सो अखर कमण गुण कौन सो मणिया मंत कौन सो वे सो हों करी जित वस आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जेबा मणिया मंत ए त्रै पैणे वेस कर ता वस आवी कंत मत हुंदी होए ए आणा ताण हुंदे होए निताणा अणहुंदे आ वंडाए ओ ऐसा भगत सदाए एक फिक्का ना गालाए सब नाम है सच्चा तनी याओ ना कही ठाहे मानक सब अमोल वे सब नाम मन मान।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां आदि पुरख करतार करण कान सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बेआपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आन नाही।

जंपो गुण बेमल सुजन जन केरे आमे नाम जा को फुरिया। इन सदगुरु से शब्द रस पाया नाम निरंजन उर थरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक त्याग तत् संत सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे छुड़त प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद परिया ते पीवे संत करे मन मज्जन उब जिनो सेवा करिया तिन पाओ निवार अनपय पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया इस प्रसाद फल पंच करे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे आन पो उन्मान अगले लागी पारस फेटिया सहज करे सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिट्या जिन मात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार निद अंतर तारयो दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सदगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग मान नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उच्चर ते अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश मिलत सांत उपजय दुर्त दूर अंतर नासे।

सदगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुर रामदास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो। जग जितौ सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नामृद नाम निधान रिद सिता की दासी। तय सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर है तरे उपर लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सहयुग जिन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा थाप जोत जगतारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास थोड़ी फिर थप्यो हर का नाम अखय निद अप्यो अप्यो हर नाम अखय निद चो जुग गुर सेवा कर फल लईं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूपोखण परण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जप करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन बंचे जाकी सरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार आगम सागर तुलखा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही ए आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की बिरथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कह एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रया पूर बोविद वर्णं सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन भय क्रम सेविये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोड़ सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही पाद खाए जियो देख रूप आतनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चंतकार खेर पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कौ कौन मेड़ सकै ईस बम ज्ञान ध्यान हरत ही ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो आराम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेद तरयो हर नाग हरयो नख बदार जियो शंख चक्र गदा पद्म आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन पुंद दसन प्रिया सहित कंठ मार मुकट शीस मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर
ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਸ਼ਾਏ ਜੀਓ ਆਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਤਰਿਓ ਸਹਨ ਕੈ ਸਾਏ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੇ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਣ ਕੁਰ ਨੇਕ ਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਰ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਹੋ ਬਰਹਾ ਜਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਧਾਰ ਤਜ ਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਪੁਰਕਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸੁਛਾੜ ਤੋਹ ਹੋਮੇ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ।

तार, तदकार मन गए अंध। श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, सेवक कहे भरपूर जुग जुग। वाह गुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रसदा सलामत। कह न सके को तू कद का, ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत। तिनको मोह भया मन मत का, 84 लख जोन उपाई। रिजक दिया सबहु कौ तद का, सेवक कहे भरपूर जुग जुग। वाह गुरु तेरा सब सदका, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर परगासा।

अवतार जय मसरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भय जिन जानियो पयो ते संसार सोई तारण गागन नव खंड मै जो स्वरूपी रहो पर पान मसरा कछ पेद रही गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जा संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप

पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन कौ दे आयो एक ओंकार।

राम चुरे दल मेलव अंतर बल अधिकार बंतर की सेना सेवी है मन तन जुज अपार सीता लह गया देसरो लक्ष्मण मुगो सराप नानक करता करनहार कर वेखे थाप थाप मन में चूरे राम चंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग पूला दैत न समझई इन पव की ये काम नानक वे प्रवा

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चितराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल साए न पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सदगुरु जम काल न छोड़ई दूजे पाए खुवाई जो मन जानदा नदर न आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलत मोहित गए अंत बेली को ना सखाई सदगुर सेवे सो सुख पाए नव से मन आई नांग से वड्डे वड़ पागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए होमे अंतर मैल गए शब्द न काढे धोए नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंधले जिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करे प्रगास ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर भजन ना करे विश्वास ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिवसदा विगास हर ज्ञानिया की रखदा हों सब बलगारी तास गुरमुख जो हर सेम दे जन नानकता का दास माया पुहंगम सर्प है या केरिया बिखवाए देखा मारण हर नाम गए गुर गारड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखया तिन सदगुर मिलया आए मिले सदगुर निर्मल होया बेखो में गया बिलाए गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए जन नानक सदा कुर्बान तेन जो चाले सदगुर पाए सदगुर पुरख निर्वैर है निध हिरदे घर लिव लाए निर्वैरे नाल वैर रचाएगा अपने कर लू की लाए अंतर क्रोध अंकार है अन दिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल निध पौक दे बिख खादे दूजे पाए बिख माया कारण परम दे फिर घर घर पत कवाए बेसवा घेरे पूत ज्यो पिता नाम तुझ जाए हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुवाए हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तस बलिहारण जो सतगुर लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नावे जम पुर जावे नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछतावे चिंता ताप तरह गए तामन पया आनंद गुर प्रसादी बुझिए सातन सुती नचिंद जिनको पूर्व लिखया तिना पेटिया गुर गोविंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद सतगुर सेवन अपना गुर सबदी विचार सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार एथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार गुरमुख शब्द संजाप दे इत साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार जम काल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार नानक नाम रते चेतनवंत हैन निरतन होर संसार जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ गुरमती नाओ मन मसे सहजे सह समाओ वडभागी नाम त्याया ऐस लागा पाओ जन नानक मंगे तूड़ तेन हम सतकुरबाणे जाओ लग चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार यो मोह माया सा पसरिया नाल चले न अंती वार बिन घर सांत न आवई किस आगे करी पुकार
ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਬੂਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਤਿਸ ਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਨ ਦੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ ਲੈ ਹੋ, ਹੋ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਣੇ ਗਾਰ, ਹਰ ਜੀਓ ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਬਖਸ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਗਰਪਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਕਿਲਵਖ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ, ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਏ ਪਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਿਚਲ ਭਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ, ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੋ ਮਨ ਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਤਿਉ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ, ਤਿਉ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾਸ, ਮਨਮੁਖੀਆ ਦੋਹਾ ਗਣੀ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈਆਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰਿਆ, ਹਰ ਗਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਹਉ ਸਤਿਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿਜੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਏ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ, ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ, ਉੱਚੀ ਹੂਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੇ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ, ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬਿਗਦ ਉੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਮੋਏ, ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਅਧ

जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर के शब्द सुभाए ओना मैल पतंग न लगई जे चलन सदगुर पाए मनमुख झूठ न उतरै जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोह आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़े लुजै गुरमुख होए तेस सब किछ सुजै नानक गुरमुख मन स्यों लुजै जिन्ना सतगुर पुरख न सेवे हो अवदना की तो विचार ओए मानस जू

जे आन दिन रहे लिवलाए, जिन्ना प्री प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ती है, नानक मिले सो पाए, गुरमुख एव मन रहसी है, जिन्ना प्री प्यार क्यों जीवन पिर बहारे, जा सो देखने अपना नानक थीवन पी हरे, जिन्ना गुरमुख

नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै गुरमुख होवै सो करे विचार गुरमुख नानक पावे पार जिन्ना अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार तिनके मुख सद उजले तित सच्चे दरबार तिन बहिंदिया उड़दिया कदे ना विसरै जे आप बख्शे करतार नानक गुरमुख मिले ना विछड़ै जे मिले सिरजनहार गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी सुखसार नदर करे जिस अपनी तिस लाए हेत प्यार सतगुर की सेवे लगया भौजल तरे संसार मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार नानक सतगुर मिले प्रापाई है सब दुख निवारण हार मनमुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए पुत कलत कुटंब है माया मोह वधाए दरगह लेखा मंगिए कोई अंत न सकी छड़ाए बिन नावे सब दुख है दुखदाई मोह माए नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए गुरमुख हुक्म ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए हुक्म सेवे हुक्म आराधे हुक्मे समय समाए हुक्म वर्त नेम सो संजम मन चिंदिया फल पाए सदा सुहागण जे हुक्मे बुझे सतगुर सेवे लिवलाए नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लहे मिलाए मानमुख हुक्म ना बुझे बपड़ी नित होमे कर्म कमाए वर्त नेम सो संजम पूजा पाखंड परम ना जाए अंतरों कसुध माया मोय विद जो हस्ती शारे उड़ाए जेने उपाए तिसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करत पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया अनदिन सेवा करत समाए अंतर सतगुर गुरु सा पूजे सतगुर का दर्श देखे सब आए मनिए सतगुर परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए हों सदा सदा बलिहारी गुर अपने

सहज सुख सारई नानक नाम निधान हृदय उरहारई करे सो चंगा मान दोई गणत लाहे अपनी नजर निहाल आपे लहो लाए जन दियो मती उपदेश विचों परम जाए जो तुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट दे वस दूजी नाहे जाए नानक सुख अनद पए प्रभ की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया।

दूर। कथ ना कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थग पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

जत पहारा तीर्ज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खल्ला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल, जिन को नदर कर्म।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो युग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तिर रहे समाए

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

ना जो सेवै जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्याव है तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तानो जिन हर त्याया जी जन नानक तन बल जासी तेरी भगत भंडार जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तू द्यापे भाव है सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैं डासाई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई ना है, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तनह किया, पंकज मोह पग नहीं चल, हम देखा तै डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। पही प्रापत मान खुदे हुरिया, गोविंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

आओ जप तप संजम धर्म ना कुमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ति।

वासा अराग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मेर साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पनवड्डा है कर डंडौत पनवड्डा है रहाओ साक तहारा साधना जानिया तन अंतर हम मैं कंडा है ज्यो ज्यो चल है चुवै दुख पावै जम काल सह है सर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है।

संत टहल की बेला, यहां खाट चलो हरलाहा, आगे बसन सोहेला। औद घटे दिन सुरण आरे, मन गुरमल का सवारे रहाओ। एहो संसार बिकार संसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगा

सब मिलै संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार, जा पद लिखै ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोए, ओना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए, नाउ पूजियै नाउ मनियै अखंड सदा सच सोए, खेहू खेर लाइयै ता जियो केहा होए, जलियां सब सियाण पां उठी चलिया रोए, नानक नाम विसारिया दर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घटे गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिले है अंक सहे लड़िया, मिलके करे कहानिया समर्थ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारी आ मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मैं सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुरबचनी पौखाए। नानक सच्चा पात साहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी होमे मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थी है गुरमुख शब्द समाए। रहाओ केता आखण आखी है आखण तोट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए। संजोगी मिलेक से विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सो थिए अवर न करना जाए। गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतो

अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवन दे अमर मार। अनहद शब्द सुहावणे पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तैहो मैं होए बिनाश, सतगुर सेवे आप।

जो दिसै चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगै जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिया पूरै तोल कीमत किनै ना पाई है रिदमानक मोल अमोल भाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाईऐ गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जमजन धारन लगई ओ भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मै मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर धन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला। परमे पाहे न विजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर महल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश होर कितै भगतना।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेते हो सो अवगुणे आवे जाए, जिस सतगुर पुरख ना भेटे हो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इहो कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुरमिल पौजल लंगी है दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे संभाली रहाओ। तू भरपूर जानिया मैं दूर, जो कश करी

श्री राग महला पहला कर पंजवा अशल शलाई नह शल नह काओ कुटारा कर सके जो साहेब राखे त्यों रहे इस लोभी का जियो टल पल बिन तेल दीवा क्यों जलै रहाओ पोथी प्राण कमाई है पौवटी ए तन पाई है सच बूझण आण जलाई है एहो तेल दीवा इं जलै कर चानन साहेब तौ मिलै रहाओ इत तन लागे बाणिया सुख होवै सेव कमाणिया सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसन पाई है कहो नानक बहा लुड़ाई है। श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनों दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए नाओ त्याई है नाओ मंगी है नामे सहज समाए मन मेरे हर रस चाख तिख जाए जिन्नी गुरमुख चाखिया सहज रहे समाए रहाओ जिन्नी सतगुर सेवया तिन्नी पाया नाम निधान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सही ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते वरले संसार हाँ मैं ममता मार कै हर राख्या और तार हाँ तिल कै बलिहारना जिन्ना नामे लगा प्यार सही सुखिए चहु जुगी जिन्ना नाम है खोटिया पार गुर मिलिया नाम पाई है चूकै मोह प्यास हर सेती मन रव रया करी माए उदास जिन्ना हर का साध आया हाँ तिन बलहार जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुणतास। श्री राग महला तीजा बहु पेह कर परमाई है मन हृदय कपट कमाए हर का महल ना पावई मर विष्टा माए समाए मन रे गृही माए उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतया गत मुक्त करै मैं पाए हर का नाम त्याई है सतसंगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां भोग करै नवखंड राज कुमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछै रिद सिद फिरै ओना तिल ना तुमाए जो प्रभावै सो थीऐ अवर ना करना जाए जन नानक जीवै नाम लै हर देवो सहि सुभाए। श्री राग महला तीजा कर पहला जिस ही की सिरकार है तिस ही का सब कोए गुरमुख कार कमावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड़ लहो, जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, जो तिस पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए, नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझे नाही, अनदन दुख विहानी, मनमुखे अंध न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विचहु मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना मनमुख पत गवाई, सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुरु की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुरु की शरणागति, हौ तन कै बल जाओ, दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दो हागण तन सिंगार, से जय कंतना आवई, नित नित होए खुवार, फिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, रहाओ, गुरमुख सदा सुहागण।

अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चलै दुख ना पावे कोए। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा, जा फिर जाना अपना तन मन अगे धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे भाई रे, गुरबिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाए।

जिन कर कारण धारिया सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए जां आपे नजर करे, सेजन शब्दे सोहणे ते सच्चै दरबार, गुरमुख सच्चै शब्द रते आप मेले करतार। गुरमति सच सलाहना जिसदा अंत ना पारा वार, घड़ घड़ आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है होमै विचों खोए, सात अन्ना मैं बाहरी अवगुणवंती रोए, सच सलाही सच लगा सचै नाए तृप्त होए, गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा धोए, आपे मेल मिलाएदा फिर विछोड़ा ना होए, नानक गुरसा लाही अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए। श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए क्या चले बाल उड़ाए, अपना पिरना पछाणे क्या मोह दिसै जाए, जिनी सखी कंत पछाणिया।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे। कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए। नानक सच्चे पातशाहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। कड़ी मुहत का पाहुना का स्वरण हार माया काम व्यापिया समझै नाही गावार। उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे। जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार। जां होवा हुक्म किरसान दा ता लुण मिणिया खेतार। पहला पहर धंधा गया दूजे पर सोया तीजे चाख चखाया चौथे पोर पया। कदी चेत ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया। जियो किया कुर्बान जिस ते सोजी मन पई।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्दी सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया।

आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान, भक्त जना को राखदा अपनी कृपा धार, हालत पलत मुखी उजले साचे के गुणसार, आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागर नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां, पूरा सतगुर जे मिले।

कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाहो, वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो, कर सेवा सुख सागर है सिर साहा पातशाहो, चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ, मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ, निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ, हर जपिया आराधिया आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां, प्रीत लगी ते

कर संगत नित साध की गुरचरणी चित लाए रहाओ। नाम निधान प्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हम मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मंतन हरे साचा एहो सवाओ, एथे मिले वडियाईया दरगह पावै थाओ। करे कराए आप प्रभु सब किछ सही हाथ, मारा पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक।

सतगुरु की सेवा लाग, जो दिसै सो विलसना, मन की मत त्याग रहाओ। ज्यो कुकर हर काया, तावै दै दिस जाए, लोभी जंत ना जानई, पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया, फिर जोनी पाए, माया जाल पसारिया, पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया, निकस ना पाए माए, जिन किया तिसै ना जानई, फिर आवै जाए। अनक प्रकारी मोहया, बहुविदेहो संसार, जिसनो रखै सो रहै, समर्थ पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे, नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां, घर दूजा। गोयले आया गोयली, क्या तिस डंफ पसार, मोहलत पुन्नी चलना तू संभल कर बार। हर गुण गाओ मना, सतगुर से प्यार, क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ। जैसे रैन प्राहुणे, उठ चल सह प्रभात, क्या तू रता ग्रत स्यों, सब फुल्ला की बागात। मेरी क्या करे, जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना, षड जासी लख करोड़। लख चौरासी परम त्या, दुलभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू, सो दिन नेड़ा आयो। श्री राग महला पंजवां, तिचर वसै सुहेलड़ी, जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया, तां तनखा कूराल। मन बैराग पया, दर्शन देखणै का चाओ, धन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वसिया कंत घर, जियो जियो सब कहात, जां उठी चलसी कंतड़ा, ता कोई न पुछे तेरी बात। पेयड़ै सो सेव तू, साहुरड़ै सुख वस, गुरमिल चाजिया चार सिख, तुद कदे न लगे दुख, सबना साहुरै वंजना, सब मुकलावन हार। नानक तन सोहागनी, जिन सह नाल प्यार। श्री राग

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ पिरावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुट सी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नर सुहावनी मैं भावै प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिख होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ वेणरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार वेण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त्र लहै कर अपने चलै कारज सार वणजा रिया स्यों वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योतिया पार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्लै पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सचै नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दाकर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिया निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन।

ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए, बाबा माया परम पुलाए, परम पुली डोहागणी ना पर्यंक समाए रहाओ। पुली फिर जसंतरी पुली गृहता जाए, पुली डूंगर थल चढ़ाए परमे मन डोलाए, तरो विशुनी क्यों मिले गर मुठी बिललाए, विछड़िया गुरमेल सी हरस नाम प्यार, साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार, ज्यो पावे त्यो रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार, अखर पढ़ पढ़ भुली है पेखी बहुत अभमान, तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान, गुरबिन किन समझाई है मन राजा सुल्तान, प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत् विचार, साथ अने आप गवाया गुर कै शब्द सिंगार, कर ही सो पिर पाया गुर कै हित अपार, गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए, गुर का शब्द मन वसिया मैं विचों खोए, नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए, कर्म मिले ता पाई है आप ना लिया जाए, गुर की चरनी लग रहो विचों आप गवाए, सच्चे सेती रत्या सचो पल्ले पाए, पुलन अंदर सब को अपुल गुरु करतार, गुरमत मन समझाया लागा तिसे प्यार, नानक साच ना विसर मिले शब्द अपार, श्री राग महला पहला तृष्णा माया मोहनी सुतबंध पकार नार, तन जोबन जग ठगया लभ लोभ अहंकार, मोह ठगौली हो मुई सा वरत संसार, मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, मैं तुझ बिन अवर ना पावई तू पावे सुख होए रहाओ, नाम सलाही रंग स्यों गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो चल सी कूड़ा मोह ना वेख, वाट वटाऊ आया नित चलदा साथ देखो, आखने आखे केतड़े गुरबिन बूझ ना होए, नाम वडाई जे मिले सच रपै पत होए, जो तुद पावे से पले खोटा खरा ना कोए, गुर शरण आई छुट्टी मनमुख खोटी रास, अष्टतात पात साह की घड़िए शब्द विगास, आपे परखे पारखू।

जिन तन मन साज सिंगारिया तिसे तीर विलाए रहाओ। तन बैसंतर होमिया एक रती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अनजन यगन जलाए। हर नामै तुल न पुजई जे लख कोटी कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाई है सिर करवत धराए। तन है मन चल गाली है भी मनते रोग न जाए। हर नाम

महले पहले सतारे अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा।

पत गवाई बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर ना काई हर सुख दाता मानी वसिया अंत गया पछताई पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अनदिन भगत करै दिन राती हौ मैं मोह चुकाया जिस स्यों राता तै सो होवै सच्चे सच समाया आपे नदर करे भाव लाए गुर सबदी बीचार सतगुर सेवे सहज उपजाय हमै तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निदान हर मन वसै हमै दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया हम सत बलिहारै जाओ अपने मन चित कह कहाई अपने मन चित कह कहाए बिन गुरे आप ना जाई हर जियो भगत वछर सुखदाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा हमें कर्म कमावंदे जम डंड लगे तिन आए जे सतगुर सेवन से उबरे हर से ती लिवलाए मन रे गुरमुख नाम ते आए तुर पूर्व करते लिखिया तिना गुरमत नाम समाए रहाओ विण सतगुर प्रतीत ना आवई नाम ना लागाओ पाओ सुपने सुख ना पावई दुख में सवै समाए जे हर हर कीचै बहुत लुचिया कीर्तना मिटिया जाए हर का पाणा भक्ति मन्या से भगत पय दर थाए गुर शब्द दृढ़ावै रंग स्यों बिन कृपा लया ना जाए जे सौ अमृत नीरी है पी बिखपल लागै ताए से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का पाणा कमाम दे बिख हमै तज विकार मन हठ कितै उपाय ना छूटी है सिमरत शास्त्र सोधो जाए मिल संगत साधु उबरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम निधान है जसंत ना पारा वार गुरमुख से ही सोह दे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दूजा और ना कोए गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच उगै गुर पाए हर रस पीवै सहज रहै उड़ै न आवै जाए निज कर वासा पाया हर हर नाम समाए मन रे गुर की कर कमाए गुर कै पाणे जे चलै ता अंधन राचै हर नाए रहाओ पंखी बिरख सुहावड़े उड़ै चौदे जाए जेता उड़ै दुख घणे नित दाजै तै बिललाए बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरि आवला साचै सहि सुभाए साखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए अमृत फल हर एक है आपे देखवाए मानमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ तिन्ना पास ना बैसीऐ ओना कर ना गिराओ कटिया तै नित जालिया ओना शब्द ना नाओ हुक्मे कर्म कमावणे पया किरत फिराओ हुक्मे दर्शन देखना जैपे जै तै जाओ हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ हुक्म ना जाने बपड़े भूले फिरै गवार मन अठ कर्म कमाम दे नित नित होए खुवार अंतर सांत ना

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वसया मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर निचल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाद ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्दे हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साल आई है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा भाव न जाने सतगुर भेटे निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन कोई परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावै हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी से उचित लागै आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाव चेतै तांगत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत में नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुरे अपने विटाओ जे हर से तीचित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तीरंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग, गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए। चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया, तीर्थ गमन करे। खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, सोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मुनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नमे प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देवे दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, घाट न किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया तू भोग।

मात पिता सुत नेह कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कर कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जारिया मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जारिया मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिनमै पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभचे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंध ना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे भरा कौ ताणा गुण अंतर नाही क्यों सुख पावै मन मुख आवण जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरै गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरै रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्तो ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख बीचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तसे न जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे।

सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तन गुलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निध मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा जो तौ कीने अपने तिन्ना को मिले ओहे आपे ही आप मोए ओहो जस नानक आप सुने ओहे संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोबिंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बौण ना माया होया कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो न तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ न जाय अकथ स्वामी सत कह जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोय जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबिन अवर ना कोए जो मोहे माया चित लाएं दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिने अवर ना कोए हर गुर शरण आई पाई है वन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जनामिन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हों मैं कर्म कमाव दे ज्यों वेसवा पुत ननाओ पिता जाता होई है गुर तुठा करे पसाओ वड भागी गुर पाया हर अहनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ।

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुरसरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटियै हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेव है सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता इको दी बाण हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखे बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चले तिस नाल इक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाति फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ आपो जे को पला कहाए। नानक ता पर जापै जा पत लेख पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगे मर चलिया त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना वे आपे जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझै ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राज दे तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई।

दरखड़िया नाल खसमै रतिया माने सुख रलिया होंदे तान नितानिया रह निमाननिया नानक जन्म सकार था जेतन कै संग मिला पौड़ी। तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जल वताएंदा आपे विसे बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुद्दों बाहर किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जान।

पाए, जब तब संयम भाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमर तो सब किलविख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दाल दो दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुआर। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सिओ, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले न विछड़ै, सह समावै सोए। महला तीजा। सो भगवती जो भगवंत जाणै, गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत कर आणै, जीवत मरै हर नाम वखाणै। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा। अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मन लाए, बाहर मल धोवै मन की जूठ ना जाए। सत्संग स्यों बाद रचाए, अंदिन दुखिया दूजै पाए रचाए। हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी। सतगुर जिनी त्याया से कड़न सवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त आगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन का होवा कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन ऐथै उथै मुख उजले, हर दरगह पैंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै, सो सिर दीजै डार। नानक जिस पिंज

सोहणे पारहर छोड़ी पतार महला तीजा। शब्द रती सोहागणी सतगुर कह पाए प्यार, सदा रावे परे अपना सच्चे प्रेम प्यार। अत सवाल्यो सुंदरी शोभावंती नार, नानक नाम सोहागणी मेली मिलनहार पौड़ी। हर तेरी सब करे उस्त तो जिन फाथे काढ़िया, हर तुदनो करे सब नमस्कार जिन पापै ते राखिया। हर ने माणिया तू माण, हर डाढ़ी हूं तू डाढ़िया। हर हंकारियां मार निवाए मन मुख मूड साध्या, हर भगतां दे वडियाई गरीबा नाथिया। श्लोक महला तीजा। सतगुर कह पाणे जो चले तिस वडियाई वड्डी होए, हर का नाम उत्तम मन वसै मिट न सकै कोए। किरपा करे जिसे अपनी तिस कर्म प्राप्त होए, नानक कारण करते वस है गुरमुख पूजै कोए। महला तीजा। नानक हर नाम जिनी आराध्या अंधन हर लिवतार, माया बंदी खसम की तिने अगै कमावै कार। पूरा पूरा कर छोड़िया हुक्म सुबारण हार, गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार। मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार, गुरमुख जिनी आराध्या तिनी तरिया पौजल संसार। सब औगुण गुणी मिटाया गुरे आपे बख्शन हार। पौड़ी हर की भगतां प्रतीत हर सब के जानदा, हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा। काड़ा अंदेसा क्यों की जय जा नाही धर्म मारदा। सच्चा साहेब सच न्याओ पापी नर हारदा, साला हो भगतो कर जोड़ हर भगत जन तारदा। श्लोक महला तीजा। अपने प्रीत मिल रहा यंत्र रखा और तार, साला ही सो प्रभ सदा सदा गुर कै हित प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल लए, साई सुहागण नार। महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे, मानस ते देवते पए तया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै सब तरे, नानक सहि समायन हरे अपनी कृपा करे। पौड़ी हरे अपनी भगत कराए वड्याई वेखालियन, अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतां नो दे आनंद थिर करी बहालियन, पापियां नो ना दे थिर रहन चुन नरक कोर चालियन। हर भगतां नो दे प्यार कर अंग निस्तारियन। श्लोक महला पहला। कबुद डूमणी कुदया कसायण, पर निंदा कट चूहड़ी मुठी क्रोध चंडाल। कारी कड्डी क्या थी है जा चारे बैठिया नाल, सच संयम करनी कारा नावन नाव जपेही। नानक अगे उत्तम सेई जे पापा पंद ना देही। महला पहला। क्या हंस क्या बगला जा कौ नदर करे, जो तिस पावै नानका कागो हंस करे। पौड़ी कीता लोड़ी काम सो हर पै आखी, कार्ज दे सवार सतगुर सच साखी है। संता संग निधान अमृत चाखी है, पै पंजन मेहरवान दास की राखी है। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी है। श्लोक महला तीजा। जियो पिंड सब तिसका सब सह दे आधार, नानक गुरमुख सेविए सदा सदा दातार। हौ बलिहारी तिन कहो जिन त्याया हर निरंकार, ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार। महला तीजा। सतगुर मिले उल्टी पई नवनिध खर्चियो खाओ, अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरन निज कर वसै निज थाए। अनहद तुनी सद वज दे उन मन हर लिव लाए, नानक हर भगत तिन्ना कै मन वसै जिन मस्तक लिखिया तुर पाए। पौड़ी हौ ढाडी हर प्रभ खसम का, हर कै दर आया हर अंदर सुनी पुकार। ढाडी मुख लाया हर पुछिया ढाडी सद कै, केते अर्थ तू आया नितेवो दान दयाल प्रभु। हर नाम त्याया हर दाता हर नाम जपाया, नानक पैनाया सुध। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग कबीर जियो का, एक सवान कह कर गावना।
ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾੜ ਧਾਰ ਭਿਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾ ਹਸੈ ਐਸਾ ਤੈ ਜਗ ਪਰਮ ਲਾਇਆ ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਾ ਮੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰਹਾਓ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋਟ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚੋ ਮਰਨਾਰ ਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ

जियो रेन संतन की मेरे मुख लागी दुरमत बिन सीक बोध्या पागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिन से कूरा जियो माज महला पंजवा विसर नाही ए वड़दाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सरैन ज्यो तुध ते आई एहो दान मुहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सबके दिया परिया जाई आनंद बिनोद तोज तमासे तुद पावे सो होना जियो जिस दा दिता सब कुछ लैना शक्ति अमृत भोजन खाना से सुखाली शीतल पवना सहज के रंग करना जियो।

मैं आद मद अंत प्रभ सोई अवरना कोय दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण रसिया रंग राता अपने कर्तव्य आपे जाने आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे एक पूरी नजर निहालिए जियो। माज महला पंजवां सफल सो बाणी जित नाम वखाणी गुर प्रसाद किने विर लै जानी तन सो वेला जित हर गावत सुनना आए ते परवाना जियो। से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हम बलतन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संखिन माहे उधारे किल विख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो। दोए कर जोड़क बिनो करी जय कर कृपा डुबदा पत्थर ली जय नानक कौ प्रभ पय कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो। माज महला पंजवां अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सुख पाया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम वखाना जल थल नीर भरे सर सुबर बिरथा कोय ना जाए जियो। दया तारी तिन सृजन हारे जी जंत सगले प्रतपारे मेहरवान कृपाल दयाला सगले तृप्त गाए जियो। वन त्रिण त्रिपवन की तोन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तसै अरादे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवां तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ता पौ केहा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तू मेरी ओट तू है मेरा माणा तुझ बिन दूजा और ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तो देव पाए जिजत पाना तित तलाए सब किश कीता तेरा होवे नाही किश असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया गुर पूरे वजी वाधाई नानक जिता बिखाड़ा जियो। माज महला पंजवा जी प्राण ब्रह्म ने अधारा भगत जीवै गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याय त्याय सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवै साध संग जन्म मरण मिटावै आस मनोरथ पूर्ण होवै भेटत गुरदर साया जियो। आगम्या गोचर किशमित नहीं जानी साधक सिद्ध ते आवै ज्ञानी खुदी मिट्टी चूका पोलावा गुरमन ही मह प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम वखाना होए कृपाल स्वामी अपना ना ओ नानक कर मैं आया जियो। माज महला पंजवां सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकर अत भारी तुमरे कर्तव तुम ही जाना हो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवै कथा सुनत मल सगली खोवै भेटत संग साध संतन कै सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना सास सास सुमारो एह मत गुर प्रसाद मन धाराओ

माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहे मेरा कड़कड़ अंतर वर्त नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को विरलाया पछाण जियो प्रा मृण की है निशानी मने को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाण जियो हथी दिती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माने जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध सियाणप किशु ना जापे अपने संतां नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुरबाणो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जीवै जन तेरे सच शब्द मन माणो जियो सासा लाहन वड पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशाणो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपुर देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चे शब्द सच्चा सा लाही सच्चे मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए न से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन नि चलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तन सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चे शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवै ओह अगम्या गोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानके को नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मरमर जमै फेर पवै कणेरे तू एको नेह चलो अगम्या पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आ बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै ना मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया।
ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ, ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ।

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने नचाए अंतर कपट दुख पावणिया। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सही सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए।

दूजै पाए दुख पावणिया, जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुगचारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईऐ, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही, सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन, गुरमत मन वसावणिया। हाउ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवै से सदा सोहै, शोभा सुरत सुहावणिया। राओ सब को तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरे मन पाए, सच बाणी तुदै सालाहनो, रंग राते भगत करावणिया। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै तां चूकै फेरा, जां तुद पावै तां नाय रचावै, तूं आपे नाउं जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया, हरक सोक सा मोह गवाया, एक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नवनिद नाम वस्या मन आए, पूरे भाग सतगुर पाया, सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेलै गुरमुख जाता, तू आपे देवै नाम वडाई, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सा लाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सस्यों मन रहा समाए, मन मनै मनै मिलावणिया। गुरमुख होवै सो सा लाहे, साचे ठाकर वे परवाहे, नानक नाम वसै मन अंतर, गुर सबदी हर मिलावणिया। माज महला तीजा, तेरे भगत सोहै साचे दरबारे, गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहै दिन राती, गुण कै गुणी समावणिया। हाउ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया, हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हाउ मैं मार मिलावणिया। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई, गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही, सहजे सच समावणिया। तुइ ते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाणै सोए, आपे करे कराए करता, गुरमति आप मिलावणिया। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए, सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा गुरमुख बन जे सदा वापारी लहा नाम सद पावने आपे वथ राख आपे दे गुरमुख बन जाय के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावने माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावने हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावने सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावने रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावने इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुर हम मैं भरम चुकाया अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावने गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावने जम जा गाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले दे सजाए कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावने पेयड़ प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावने पेयड़।

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे।

संत जना मिल पाई है रसना नाम भणा, जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा, एक खेनु तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना, जलथल महियल पूरिया रव्या विच वणा, सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा, जिनी रावया सो प्रभु तिन्ना पाग मना, हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना, चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा, वैसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिशो हो, हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो, पुत्र कलतर ना संग तना हर अवनासी ओहो, पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोहो, एक सहर के नाम बिनो अगे लइए खोहे, दैव सार विगुचना प्रभ ने अवर ना कोहे, प्रीतम चरणी

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हरे अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवनहार वन तिण प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावनहार जिनी सखिए प्रभ पाया हो तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारनहार सावन तिना सुहागणी।

पुकारीता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मुयाना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मनमुख अंध प्यार, वाहिगुरु डुबा संसार। महला पहला। दस बाल तन बी श्रवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पर होए, पचासी पग

पीसो कुत्ती तात बोला जे समझाई है पढ़िया समृत पाठ अंधा चानन रखी है दीवे बले पचास चौने सोय ना पाई है चुन चुन खावे कास लोहा मारन पाई है टह ना होए कपास नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनास महला पहला तैहा कंचन तुटे सार अग्नि गंड पाए लोहार गोरी सेती तुटे पतार पुत्ती गंड पवै संसार राजा मंगे दिते गंड पाए भुखिया गंड पवै जा खाए काला गंड नदियां मीह झोल गंड प्रीति मिठे बोल बेदा गंड बोले सच कोए मोया गंड नेकी सत होए एत गंड वरत संसार मूर्ख गंड पवै मोह मार नानक आखे हो बिचार सिफती गंड पवै दरबार पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे बिचार एक खोटे एक खरे आपे परखणहार खरे खजाने पाई है खोटे सटिए बार वार खोटे सच्ची दरगह सुटी है किसे आगे करे पुकार सतगुर पिछे भज पवै एहा करनी सार सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार सच्ची दरगह मनियान गुर कै प्रेम प्यार गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार श्लोक महला पहला हम जेर जिमी दुनिया पीरा।

ना सपत दीप नह जलो, अन्न पौन थिर ना कोई, एक तुई महला पहला, नारिजिक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रह जर, द्रख्त आव्यास कर, देहंत सुई, एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया सोए, मेटना सकै कोए, कला तरह हरै सुई, एक तुई पौड़ी, सच्चा तेरा हुक्म, गुरमुख जानिया, गुरमति आप गवाए, सच पछाणिया, सच तेरा दरबार, शब्द निशाणिया, सच्चा शब्द विचार, सच समाणिया, मनमुख सदा कूड़ियार, परम पुलाणिया, विष्टा अंदर वास साधना जानिया, विण नावें दुख पाए आवन जानिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया, सलोक महला पहला, सिंहा बाजा चरगा कुहियां, इन आख वाले

असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुवा जेते जी जीवे लै साहा जीवा ले तां के असा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। महला पहला

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किश कहन ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामण कर मन लए साह संयोग वियाह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पट पंडित बाद वखाणै भीतर होंदी वस्त न जाणै हो ना मुआ मेरी मुई बलाए ओह ना मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुर।

केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। हाट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी करे आवे, अगो देखे पिछों देखे, तू ते कहां छुपावे। तट तीर्थ हम नवखंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी तोलन लागा, कठी मैमन जारा। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते

जियाड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। गौड़ी बैरा अग्न महला पहला रैण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। नाम ना जानिया राम का मूड़े फिर पाछा पछताहे रे रहाओ अंता तानो तरनी तरे अंत ना चाहया जाए अंत को चाहन जो गए से आए अंत गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए कर्मा उपर निबड़े जे लुचे सब कोए नान करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जापी खसम का किसे वडाई दे। गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो। मैं बनजार नराम की तेरा नाम वखर व्यापार जी रहाओ कोकल होवा अंब बसा सह शब्द विचार सह सुभाए मेरा सहो मिले दर्शन रूपिया पार। मछली होवा जल बसा जी जंत सबसार उर्वार पार मेरा सहो बसे हो मिलोगी बहां पसार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे पव जाए नानक सदा सोहागणी जन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी देव की महला पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद जय कर कीर्ति आखिए करते का होय बिचारो तित कर गावो सोहेला सिवरो सृजनहारो। तुम गावो मेरे नरपाव का सोहेला हों वारी जाओ जित सोहेले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालिया नो देखे गा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजनिया सीसड़िया जो हुए सैब स्यो मेल। कार कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से देह आवन। राग गौड़ी गुआरे री महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मिले हर मेला होई आपे मेल मिला वै सोई मेरा प्रभ सब विद्या पे जाने हुक्मे मेले शब्द पछाणे। सतगुर कै भय प्रम पौ जाए पैराचे सच रंग समाए रहाओ। गुर मिले हर मन वसै सुभाए मेरा प्रभ पारा कीमत नहीं पाए शब्द सलाह अंत ना पारा वार मेरा प्रभ बख्से बख्शन हार। गुर मिले सब मत बुद्ध होए मन निर्मल वसै सच सोए साच वसै साची सबकार उत्तम करनी शब्द विचार गुरते सच

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नाव निध पाए, गौड़ी गुआरेरी महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मत उत्तम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरेरी महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुर सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हम मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरेरी महला तीजा, सतगुर मिले वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुंडप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा।

गुरमुख नाम निधान लै दरगह लै छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए अंदर भगती रतिया हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हों मैं तजे विकार जन नान करमी पाईयां नू हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पेई अड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया सोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण संभलै साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससरे पेये पिर वसै कहो किद बिद पाईए आप निरंजन अलख है आपे मिलाइए रहाओ आपे ही प्रभ देह मातु हर नाम ते आईए वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाईए हों मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाइए सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा सेव सकत मिटाइया चूका दियारा तुरमस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईए संत जना जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है

ते हर जन हर मिलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे रहाओ। जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावै, कामन प्रीत जा पिर कर आवै, हर जन प्रीत जा हर जस गावै। सारंग प्रीत बसै जल तारा, नारपत प्रीत माया देख पसारा। हर जन प्रीत जपै निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे। गुरसिख प्रीत गुर मिलै गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी गुआरे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रपाए, पूखे प्रीत होवै अन खाए। गुरसिख प्रीत गुर मिलिया गाए, हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, कर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ। चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे। बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिकसै देखै माए, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए। होर सब प्रीत माया मोह काचा, बिन सजाए पूरा कछ पाचा। जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी गुआरे री महला चौथा। सतगुर सेवा।

ज्यों जन्नी गर्भ पालती सुत की कर आसा, वड्डा होए तन खाड़ दे कर भोग बिलासा, त्यों हर जन प्रीत हर राखदा, दे आप हथासा। मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गोसैया, जानकी उपमा तुझे वडैया, रहाओ मंदिर घर आनंद हर, हर जस मन पावै सब रस मीठे मुख लगै, जा हर गुण गावै, हर जन परिवार सुधार है, एक ही कुली सब जगत छुड़ावै, जो किश किया सो हर किया, हर की वडियाई।

पूज कराई, हर भगत भंडार लहाई दा आपे वरताई। लाला हट विहाजिया क्या तिस चतराई, जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढ़ाई। जन नानक हर का दास है हर की वड़ियाई, गौड़ी गुआरेरी महला चौथा। किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए, हल जोते उद्यम करे मेरा पुत धी खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिड़ाए, मैं मूर्ख की गत की जय मेरे राम। गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम रहाओ। लै तुरे सौदागरी सौदागर धावै, तन खट्टै आसा करै माया मोह वधावै। त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावै, बिकसन चै हटवाणिया बै हट कमाए। मो झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए, त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए। एहो माया मोह कुटुंब है पाए दूजै फास, गुरमति सो

हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लहे हर भावे। हम अपराधी राखे गुरसंगति, उपदेश दियो हर नाम छड़ावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंद मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सत गुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे।

सगल कड़ा के अंतर्यामी सर्व सुखा सुख साचा ए हो गुर उपदेश मन मै ले हो जा कहो राम नाम लिव लागी कहो नानक सो धन वड भागी गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा सुन।

हर हर नाम जपत जंतारियो, अग्न सागर गुर पार उतारियो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भय, जन्म जन्म के किल विख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे, अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल, पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूरे ओ सब जाए। गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे। जो उबरे से बंद लक खरे, जे तंदे मैं ओए लपटाए। उनते दुगड़ दिड़ी उन माए, ओह बेला का चीत न आवे। बिनस जाए ताहूं लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए, मीठी कर कर बिख्या खाए। हाँ बंदा हाँ साधो बैर, हमरी भूम कौन काले पैर। हाँ पंडित हाँ चतर सियाणा, करने हरना बुझे बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने, क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावे तित तित लगना, अपना भला सब का हूं मंगना। सब किस तेरा तू करना हार, अंत नाही किस पारावार। दास अपने कौ दी जैदान, कबू ना विसरे नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु से आन पे अगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभ की दरगह शोभा सेत, मन मेरे गहो हर नाम का उल्ला। तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ। जो बोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अगन सीत का लाश दुख, नाम जपत मन होव सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिसे आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर माना या गाना। अनक रूप देखने पतियाना, पुत्र कलत्र उर जो जान मेरी। ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। जो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारे तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़े, तिसके पाले कछु ना पड़े। जिसका राज तिसे का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिना है

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी ब्रह्मता फेर, एक जल फहाए पंखी, रस रस को करे बोरंगी। कहो नानक जिस पय कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। तौ कृपा ते मार्ग पाई है, प्रभ कृपा ते नाम ते आई है, प्रभ कृपा ते बंधन छुट है, तौ कृपा ते हम मैं तुट है। तुम लावाओ तौ लागे सेव, हम ते कछु न होवे देव रहाओ। तुद पावै ता गावा बाणी, तुद पावै ता सच बखाणी, तुद पावै ता सतगुर मया, सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद पावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावै सो सत धर्मा, सर्व निदान।

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नानक कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधो, चाखत होए रह बिस्मादो। अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कत हूं जाइए, साध संगत वडभागी पाईए। आठ पहर जेहवे आराद, पार ब्रह्मो ठाकर आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे। आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार। इस ही मध्य बस्त्या पार, इस ही पितर सुनियत साहो। कौन बापारी जा कहुआ विसाहो। नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ। मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय।

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया अमोल रतन साज दिखलाया कर कृपा जा मिले साहे कहो नानक गुर कै वे साहे गौड़ी महला पंजवां ग्वारेरी रैन दिन सो रहे करंगा प्रभ को जाने सधी संगा ठाकर नाम कियो उन वर्तन तृप्ता गवन हर कै दर्शन हर संग्राते मंतन हरे गुर पूरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहार आज्ञाकार एको बनजो एको व्यवहारी अवर न जाने बिन रंकारी हरख सोग दहूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दिसे सब मैं सब ते रहते पार ब्रह्म का हुए ध्यान तरते संतर की महिमा कमन बखाना अगाध बोध किस्मत नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय तूर संतन की नानक दी जय गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत तू मेरी पात।

तुम राखो तिवि ही रहना, जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिध तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार, तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतन पेक शोभा, मूल व्याधि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु उड़ तुम्हारी रहाओ, व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता। व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मद मस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज मैल सिंगार, पाई दूध व्याप्त अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त हे जात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापे माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताका निकटना आवे माई, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साध, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे, सावत वस्तु अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, गृह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना भाई, दर्ब से अणप ना होए रहते, सा संग दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्व निधान, सबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब धन माल, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। जा कै वस खान सुल्तान, जा कै वस है सगल जहान, जा का किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ। सब ते ऊंच जा का दरबार, सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुखड़े राट है, जिस सिमरत जम किशु ना कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी, सतगुर पेट तह मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले। सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुर ते प्रभ जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं अमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नी दया, साध संग नानक नाम लया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, साध संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुर पैर। अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जसकानी रहाओ। सहज सुखिया नंद असहज सुखिया नंद निदान, रखन हार रख ले निदान,
दुख दर्द बिन से पै भरम आवन जान रखे कर करम पेखै बोलै सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगास पूर रहे कै गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जा कहो हो कृपाल ते जन कीसा पूर्ण काल गौड़ी गुआरे री महला पंजवा बंधन तोड़ बोलावे राम मन में लागे साहि ध्यान मिटै कले सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा ते संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस्या मिलावे सर्वरदान गुरु ते पावे आप त्याग मिटै आवन जाना साध कै संग पार ब्रह्म पिछाणा जन उपर प्रभय दयाल जन की टेके गोपाल एका लेवे को मन पाओ सर्वरदान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म सिव लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया दिहारा नानका प्रभ अपरिया पारा गौड़ी गुआरे री महला पंजवा जिस मन वसै तरह जन सोए जां कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ ना ब्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई गुरपुरे ते ए मत पाई है रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगमा गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्वनिधान प्रभ की पूजा पाई है मान जाकी टहल न बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निधान हर लख स्वामी जी जन तेरी सरनाई नानक नाम मिले वड़ियाई गौड़ी गुआरे री महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिवरो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पैसा बिन सहर कह नाए बिन हर पाओ काहे का मानै हर बिसर तो काहे सुख जानै रहाओ जिन तारे बहुत तरन आगास जा की जोत जी प्रगास जा की बख्शना मेटै कोए सिमर सिमर प्रभ निरपा होए आठ पहर सिमरो प्रभ नाम अनक तीर्थ मजन इशनान पार ब्रह्म की सरणी पाहे कोट कलंक।

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, करी दया सदगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सफल फले, गौड़ी महला पंजवां, ताप गए पाई प्रभ सात, शीतल पए कीनी प्रभदात, प्रभ कृपा ते पए सुहेले, जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ, सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ, सगल रोग का बिनस्या थाओ, सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी, दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै, गौड़ी महला पंजवां, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओह बेला को हम बल जाओ, जित मेरा मन जपै हर नाओ रहाओ, सफल मूर्त सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी, सफल ओह माथा संत नमस्कार सो, चरण पुनीत चले हर मार्ग, कहो नानक भला मेरा।

बिन भगवंत नाहीं अनकोए, मारा राखै को सोए रहाओ। गुर के चरण हृदय उरतार, अग्न सागर जप उतरै पार। गुरमूर्त स्यों लाए ध्यान, इहां उहां पावै मान। सगल त्याग गुरसरनी आया, मिटया देसे नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवां, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसै मन आए। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। रहाओ इकस बिन नाही दूजा कोए, जां की दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अखर मन मैं लेख। रव रहे आ सरबत स्वामी, गुण गावे नानके अंतर जामी।

पार ब्रह्म अपरम्पर स्वामी सगल कड़ा के अंतरजामी करो अरदास अपने सदगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवा कण बिना जैसे थोथर तुखा नाम बिहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम बिहून त्रिगदेह बेगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत बिहून कहा सोहाग नाम बिसार लगे अनसवाए ताकि आसना पूजै काए कर किरपा प्रभ अपनी दात नानक नाम जपै दिन रात गौड़ी महला पंजवा तू समर्थ तू है मेरा स्वामी सब किस तुम ते तू अंतरजामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उदरै जन कोट रहाओ जेते जी ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूख नेरे जो किश वरतै सब तेरा पाणा हुक्म बूझै सो सच समाणा कर कृपा दीजै प्रभदान नानक सिमरै नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दर्श पाई वडभागी जा की राम नाम लिव लागी जा कै हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ सर्व निधान राखे जन्माहे ताकै संग किलविख दुख जाए जन की महिमा कथी न जाए पार ब्रह्म जन रया समाए कर किरपा प्रभ बिनो सुनिजै दास की तूर नानक कौ दीजै गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसै मन आए पज मन मेरे को नाम जी तेरे कह आवै काम रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता गुरपूरे का निर्मल मंता छोड़ उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जा कौन दर करे गौड़ी महला पंजवा हिरदय चरण

हर सिमरत पूर्ण पद पाया सा संग पै परम मिटाया जत कत देखो तत रहया सुमाए नानक दास हर

सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा, नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत समट कलेस, चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस पीवो प्रप्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए, साध कै संग किलबिक सब धोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दी जय।

माए खसम बिसार आन कम लागै कौडी बदले रतन त्यागै रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सोभा अमृत रस खावै खान पान जिन दिए तसै न जानै सवान।

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन पूरे।

साधु संग करो सबको, ए सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत। प्रांबिन से गाय गुणनीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जाका सिमरन जमने डरुआ, रहाओ चरण कमल प्रभु दय निवास।

ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ। आगे आप एहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जाप, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान। आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवां, सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल। राम रवत सदी सुख पाया, मया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त ना पाईऐ, मुक्त पदार्थ नाम त्याई रहाओ। पूजा तिलक करत इशनाना, शुरी कार्ड लेवै हथ दाना। बेद पढ़ै मुख मीठी बाणी, जिया कुहत न संगै प्राणी। कहो नानक जिस कृपा तारै, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचारै। गौड़ी महला पंजवा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुर तुमरे का सवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल की नो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जलै, हर संग राते माया नहीं छलै। हर संग राते नहीं डूबै जलाओ, हर संग राते सफल फलाओ। सब पै मिटै तुम्हारे नाए, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ। हर संग राते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जे साधका मंता। हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस। हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंदन जागे। हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते परम पौ नसै। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। कहो नानक तिनको बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उद्यम कर

खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपै पए, कृपा निदान की सरणी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्त्र पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवां, कोट मजन कीनो इसनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम। सगल पवित गुण गाय गोपाल, पाप मिटाए साधु शरण दयाल। रहाओ बहुत बहुत उर्द तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभु स्यो मन माने। आगाध बोध हर अगम्या पारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक प्रभु कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवां। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरदे बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा, तिसे आराध मेरा मन धीरा रहाओ। आन दिन जपो गुरु गुरनाम, ताते सिद्ध पए सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पए, जन्म जन्म के किलबिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने शिव की आपै रखाई। गौड़ी महला पंजवां, अपने सेवको आप सहाई। नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए। करन करावन पूर्ण सज सोए, रहाओ आप मन बसिया करना हारा। पै बिरसे आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे। जन्म जन्म के किल बिखलाथे, कह ना जाए प्रभ की वडियाई। नानक दास दा शरणाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवां। दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद। राम को बल पूर्ण भाई, ताते बिरथा ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रपत गवाई, नानक हर गुण निरपौ गाई। गौड़ी महला पंजवां, पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गए लेहो अंगुरिया, रहाओ। श्रवणन सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीना नाथ अनाथ करना मैं, साजन मीत पिता मैं तरिया। चरण कवल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दै गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो। रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुखदातया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्तो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सदी दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला, कवन विधि विचार। शरण समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अहट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न पय के सवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुतबंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिखतर या संसार। गौड़ी बैरागण रहोए के, शंत के घर। महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। है कोई राम प्यारो गावै,
ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਚ ਪਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਬਨ ਬਨ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹੈ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਹਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ।

नानक मांगत नाम आधारे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन गुण प्राण पात मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्रभ दर्शन कहो फिरत तसाई। दीन दयाल किरपाल प्रभ नानको, सा संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती। को संत मिलै वड़ भागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगै। मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै। आन दिन फिराओ तिस पिछै वैरागी, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे। भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण। राम रतन हियरे संग्राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज। आतीखण मोकी फास, काटन हार जगत गुरु गोविंद। चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम। दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी। जियो पिंड सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिन रहनी। है कोई संत मिलावै नेरा, रहाओ सेवा करो दास दासन की। अनक पांतिस करो निहोरा, तुला तार तोले सुख सगले। बिन हर दर्श सबो ही थोरा, संत प्रसाद गाए गुण सागर। जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेट हर नानक। जन्म कृतार्थ सबल सवेरा, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सह सुखदाता। मोहे मार्ग दे बताई, रहाओ अंतर अलख न जाई। लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया। एहो परम कहो क्यों जाई, एका संगत एकत ग्रह बसते। मिल बात ना करते भाई, एक बसद बिन पंच दुहेले। ओ बसदा गोचर ठाई, जिसका गृहो तिन दिया ताला। कुंजी गुर सौ पाई, अन क्यों पाव करे नहीं पावै। बिन सतगुर सरनाई, जिनके बंधन काटे सतगुर। तिन साध संगत लिव लाई, पंच जना मिल मंगल गाया। हर नानक भेद ना पाई, मेरे राम राय। इन विद मिलै गुसाई, सहज पया प्रमखिन मैं नाठा। मिल ज्योति जो समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठ लै। सतगुर मजै बतायो, रहाओ जात का देखो ताता तुम ही। मोहे एहो विश्वास होए आयो, कै पै करो अरदास बेनती। जो सुनतो है रगरायो, लयो सहसा बंधन गुर तोरे। तां सदा सह सुख पायो, होना सा सोई फुन होसी। सुख दुख कहां दिखायो, खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा। गुर पर्दा खोल दिखायो, नाव निध नाम निधान इकठाई। तो बाहर कैठ जायो, एक कनक अनक भांत साजी। बहु प्रकार रचायो, कहो नानक परम गुर खोई है। इव तत्त मिलायो,
गौड़ी महला पंजवा औध कटै दिन सरै नारे मन गुरमल का सवारे रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला इहां खड़ चलो हरलाहा आगे बसन सुहेला एहो संसार बेकार सहसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पी आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जां को आए सोई विहा जाओ हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे नानक दास ही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्ग

कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अवनासी राया निरपौ संग तुम्हारे बसते एहो डरन कहां ते आया रहाओ। एक महल तू हुए अफारो एक महल निमानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो। एक महल तू पंडित भगता एक महल खल होता एक महल तू सब किश ग्राहज एक महल कशु ना लेता। काठ की पुत्री कहां करे बपरी खिलावन हारो जाने जैसा पिख करावे बाजीगर ओ तैसो ही साजियाने। अनक कोठरी बहुत पात करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना। क्या हो करे विचारा जिन किश किया सोई जाने जिन ए सब बिसाजी कहो नानक परंपर स्वामी कीमत अपने काजी। गौड़ी महला पंजवा छोड़ छोड़ रे बिखिया के रसुआ उर्ज रे ओरे बावर गावर।

वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते भ्रम पौ काट किए नह केवल जब ते हमे मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जेह प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावे तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतित पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है देहो दर्स हर राया सोई होवा जो तिस पाणा या वरना किन्हीं कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्र मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कै पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछे गौड़ी महला पंजवा हो ता कै बलिहारी जा कै केवल नाम आधारी रहाओ महिमा ता की केत गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज अनंत ना संग उन संसार अवर नाम दाते जगत उदारण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनके उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ता कै चरण परो ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की ऋण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवध जो दिस सब केश युग मैं काटिया नाम निदान सद नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मैं रविया निमख निमख नमस्कारा दिख्या गुर की मुंद्रा कानी दृढ़ो एक निरंकारा पंच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैराग ने आज्ञाकारी तब निर्मल योगी थिए परम जराए चराई विभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भूता जो ठाकर मस्तक लेखिया जै पौ नाही तहा आसन बांधो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखे ओ जुगत नाम मन पानी ऐसा योगी वडभागी पेटै माया के बंधन काटै सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटै गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औखद जां को गुरदिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो ते तंते गुर शब्द दीपक प्रगासा भ्रम की जाली ता की काटी जां को साध संगत विश्वासा तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोइथ साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तां तृप्तिया गाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरे मोहया नाथ सरण प्रभ।

कछु स्याप उक्त न मोरी रहाओ कर्ण करावन सब कि तुम ही तुम समर्थ नाही अनहोरी तुमरी गतमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रवराते ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाह जैसे दृष्टो चन चकोरी राम संत मैं भेद किश नाही एक जन कई मैं लाख करोरी जा कह ही है प्रगट प्रभु होवा आन दिन कीर्तन रस नर मोरी तुम समराथिया पार अतूचे सुखदाते प्रभ प्राणिया दोहरी नानक कहो प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा तुम हर सेती।

हर नाम नो सागर लहर संसा संसार गुर बोध पार ग्राम नो रहाओ। काल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया बसरियत कनी उबरे जप जप हर गुनी। मतवारो माया सोया गुर भेट परंपो खोया कहो नानक एक ते आया कट कट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर लै लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल सा दिया। बख्शीस वजो मिले एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुखी उजले गौड़ी महला पंजवा। जिया रे ओला नाम का अवर जे करन करावनो तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है वड़े पाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है या गै तिल नहीं मानी है। अहु बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा कर नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा बार न बलिहार न लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अदरिया रहाओ। कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जो